You are listening to Radio Olive 106.3 FM.

You are listening to Radio Olive 106.3 FM. अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है।

You are listening to Radio Olive 106.3 FM.

तुरंत आपके मॉर्निंग को बनाएंगे बिंदास मॉर्निंग। सुनिए आरजे कशिश और सुदेव को हर सुबह 6 से 10 बिंदास मॉर्निंग में ओनली ऑन रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास।

0: धुरंधर आपके मॉर्निंग को बनाएंगे बिंदास मॉर्निंग। बिंदास मॉर्निंग सुनिए आरजे कशिश और सुदेव को हर सुबह 6 से 10 बिंदास मॉर्निंग में ओनली ऑन रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास। बिंदास मॉर्निंग
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग। मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पॉन्सिबल ज्वेलर। मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स्ड होती है और आती है मलाबार प्रॉमिस के साथ, जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा।
2: कमर्शियल बैंक, योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस। सेव मोर, ड्रीम बिगर। विन अप टू 5 मिलियन रियाल्स विद कमर्शियल बैंक।

आप सभी को एक सुपर डुपर गुड मॉर्निंग। स्टेशन क्लॉक में 6:06 हो रहे हैं, आप सुन रहे हो बिंदास मॉर्निंग्स ओनली ऑन रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम और मैं हूं आपका मेजबान सुदेव। तो भाई कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि यहाँ पे भरने वाले हैं उड़ान। ढेर सारी बातें करेंगे, गुफ्तगू करेंगे, गाने सुनाएंगे, गुनगुनाएंगे, किस्से खबरें शेयर करेंगे और मोस्ट इम्पोर्टेंटली आपके साथ वक्त बिताएंगे। और यही हम बार बार हर सुबह याद दिलाने के लिए आते हैं कि वाओ मोशाए मॉर्निंग सिर्फ गुड नाइट बिंदास होनी चाहिए। और मॉर्निंग को बिंदास बनाने के लिए यहाँ पे बातें तो होंगी ही होंगी मगर गाने भी हम जो है प्यारे वाले आपके लिए लाए हैं। और आज जो है थोड़ा क्यूटनेस का माहौल लग रहा है मुझे, तो चलिए क्यूट गानों का एक लिस्ट जो है आपके लिए लेकर आए हम। मगर मैं कह रहा हूँ भाई फिकर की क्या बात है, मैं हूं ना किसका है?

भाई इस विस्लिंग का अलग फैन बेस है, तो चलिए मैं हूं ना मूवी का टाइटल ट्रैक सुनते हुए आज की बिंदास मॉर्निंग को किक स्टार्ट करते हैं। आपके मैसेजेस का सिलसिला शुरू कर दीजिए, 3311063 पर मैसेज कीजिए, मुझे बताइए क्या हाल है, कैसा चल रहा है सब कुछ। दो दिन हम सुबह नहीं आए थे तो मिस किया गया मुझे। हाँ बोलना ठीक है। तो 3311063 पर आप अपने गुड मॉर्निंग मैसेजेस कोड्स भेज सकते हैं, मोटिवेशन मैसेजेस भेज सकते हैं, इंस्पिरेशनल मैसेजेस भेज सकते हैं, क्यूट क्यूट मैसेजेस भी भेज सकते हैं, मगर मैसेज जरूर भेजना। 3311063 ये है हमारा नंबर। तो तत्काल प्रभाव से तुरंत से पहले अभी के अभी कर दीजिए मैसेज सेंड और चलिए शुरू करते हैं एक बहुत ही प्यारा सा सफर आज का। श्रेया घोषाल और सोनू निगम की आवाज में मैं हूं ना मूवी का टाइटल ट्रैक। स्टे ट्यून्ड, यह बिंदास मॉर्निंग्स ओनली ऑन रेडियो ऑलिव 106.3 FM, जियो बिंदास।

0: सोचो अगर सेविंग से आप बन जाओ मिलियनेयर, कमर्शियल बैंक के सेव एंड विन कैंपेन में भाग लीजिए।
1: हर 10,000 कतरी रियाल सेविंग ग्रोथ पे मिलेगा एक कूपन, या सिर्फ 50% सैलरी सेव करो एंड एंटर द ड्रॉ।
0: न्यू कस्टमर हो तो अकाउंट खोलो और फर्स्ट सैलरी ट्रांसफर पे गारंटीड चांस टू विन,
1: और 9 महीने की कंसिस्टेंट सैलरी ट्रांसफर के साथ मेगा ड्रॉ में एंट्री पक्की।
0: तो फिर सोचना क्या, अगले मिलियनेयर आप हो सकते हो। आज ही शुरू करो सेविंग्स, कमर्शियल बैंक, सेव एंड विन।
2: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.
3: Hi everyone, this is Benny Dial here.
4: Benny Dial here.
3: Olive Radio 106.3.
4: Jio Bindas.
5: Olive Suno Radio Network. Qatar's number one Asian radio.

0: आरजे कशिश और सुदेव को हर सुबह 6 से 10 बिंदास मॉर्निंग में।
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग। मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पॉन्सिबल ज्वेलर। मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स्ड होती है और आती है मालाबार प्रॉमिस के साथ, जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा।
2: कमर्शियल बैंक, योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस। सेव मोर, ड्रीम बिगर। विन अप टू 5 मिलियन रियाल्स विद कमर्शियल बैंक।

0: इरशाद अली, नीति मोहन और नकाश के आवाज में रांझना मूवी का एक बहुत ही प्यारा गाना सुना हमने। आप सुन रहे हो रेडियो ऑल 106.3 FM और मैं हूं आपका मेजबान सदेव। स्टेशन क्लॉक में 6:20 हो रहे हैं और यहाँ पे भाई हमारे पास आए हैं मैसेजेस। सविया साची भाई का मैसेज आया है, उन्होंने बोला है गुड मॉर्निंग करके। रिशीन का मैसेज आया है, रिशीन का मैसेज आया, लिखा है कि होपिंग योर डे इज एज ब्राइट एज बोथ ऑफ यू। गुड मॉर्निंग जियो बिंदास, हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू सो मच रिशीन, थैंक यू सो मच। वैसे कशिश आज आई नहीं है, कशिश की तबीयत थोड़ी खराब है, तो मैं कशिश को जरूर आपका मैसेज जो है कन्वे कर दूंगा। थैंक यू सो मच मैसेज करने के लिए। सैफुल्ला भाई का मैसेज आया है, उन्होंने बोला है गुड मॉर्निंग सर करके। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, थैंक यू सो मच मैसेज करने के लिए। जुल्फी भाई का मैसेज आया है और उन्होंने लिखा है गुड मॉर्निंग, द ब्यूटिफुल थिंग अबाउट टुडे इज दैट यू गेट द चॉइस टू मेक इट बेटर देन यस्टरडे। वाह वाह वाह, जुजारू मोटिवेशन, थैंक यू जी, थैंक यू। आपको भी काफी बड़े और बिंदास दिन जो है हम विश करते हैं। अबरार भाई का मैसेज आया है, अबरार भाई ने भी एक बहुत ही प्यारा सा गुड मॉर्निंग मैसेज जो है भेजा है फोटो के साथ, काफी बढ़िया फूलों का एक गुलदस्ता। और उसके साथ मुझे शशिकांत पाटिल जी का मैसेज आया है, लिखा है गुड मॉर्निंग, मे योर डे ओवरफ्लो विथ हैप्पीनेस एंड सक्सेस। थैंक यू सो मच जी, थैंक यू सो मच। आपका भी दिन जो है काफी बढ़िया और बिंदास जाए। और नाजनीन जी का मैसेज आया है और यहाँ पे लिखा है एवरी मॉर्निंग इज अ न्यू बिगिनिंग, अ न्यू ब्लेसिंग, अ न्यू होप, इट्स अ परफेक्ट डे बिकॉज़ इट्स गॉड्स गिफ्ट, हैव अ वंडरफुली ब्लेस्ड डे टू बिगिन विथ, गुड मॉर्निंग करके। थैंक यू सो मच जी, थैंक यू सो मच। आपको भी काफी बढ़िया और बिंदास दिन में विश करता हूँ। जिन सबने मुझे मैसेज किया है आप सभी को काफी बढ़िया प्यारा झकास बिंदास सा दिन जो है मैं विश करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आज के सारी जो आपकी मन्नतें हैं, दुआएं हैं, सब पूरी हो जाए, काफी बढ़िया जाए, हंसते हंसते हंसते जो है आज का दिन कटे। और साथ ही साथ अगर आपने अभी अभी ट्यून इन किया है तो जानी इंतजार किस बात का है, सीधा मैसेज कीजिए 3311063 पर, तो आपके मैसेज का इंतजार रहेगा। और जैसे ही हम गानों के उस पार वापस आएंगे तो सवाल लेकर आएंगे, देखते हैं कि आप पांचवी छठी सातवीं आठवीं नवी दसवीं ग्यारहवीं बारहवीं इन सबसे कितने तेज हैं। कशिश है नहीं यहाँ पे, वरना उसके भी पूछते कि कशिश से भी कितने तेज हैं। फिलहाल यहाँ पे गाना सुनते हैं, आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।
1: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर।
2: क्या बात है सर, क्या पर ये बात है।

0: विशाल मिश्रा और तुलसी कुमार की आवाज में हमने बॉर्डर टू मूवी का गाना सुना। आप सुन रहे हो रेडियो ऑलिव 106.3 FM और मैं हूं आपका मेजबान सदेव। स्टेशन क्लॉक में 6:32 हो रहे हैं और यहाँ पे भाई वक्त हो चुका है ब्लैक बोर्ड स्टोरीज का।
1: रेडियो ऑलिव प्रेजेंट्स ब्लैक बोर्ड स्टोरीज।
0: ब्लैकबोर्ड स्टोरीज का सवाल पूछने से पहले भाई मैं जो है यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट सेट करना चाहूंगा। हम सब जानते हैं जब भी हम बीमार होते हैं हॉस्पिटल जाते हैं तो डॉक्टर्स तो हमारा देखभाल करते ही करते हैं, मगर सबसे ज्यादा कोई हमें प्यार कंसर्न और केयर देता है तो वो है नर्सेस। और उनका जिस तरीके से एक व्यवहार रहता है हमारे साथ, कई हद तक हमारे डिजीज को या फिर हमारे हमको जो एक तकलीफ महसूस होती है वो कई हद तक ठीक हो जाती है। और जब भी वो मुस्कुराते हुए हमारे पास आते हैं, पूछते हैं क्या हो गया, सब ठीक है, कैसा है, बात करते हैं, तो हम बेहतर महसूस करना शुरू करते हैं। जिस प्यार के साथ, दुलार के साथ वो हमारा देखभाल करते हैं, कई हद तक हम जो है और अच्छा महसूस करने लग जाते हैं। तो देखिए, हमारे मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में नर्सेस का रोल जो है काफ़ी बड़ा है। तो सबसे पहले मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा उनके सर्विस के लिए, क्योंकि उनका जॉब जो है बहुत चैलेंजिंग है, बहुत डिमांडिंग है। वक्त कभी हम घड़ी देख के काम नहीं कर सकते उसमें, और हमेशा एक रहना पड़ता है, ऑन द एज जो है रहना पड़ता है, कभी भी जो है इमरजेंसी के लिए बुलाया जा सकता है। तो वो एक बहुत ही टायरिंग शेड्यूल हो जाता है, मगर उसके बावजूद भी हंसते हुए आते हैं, काम करते हैं, हमारा देखभाल करते हैं, तो उनको सलाम करते हैं। और इसलिए आज का जो ब्लैकबोर्ड स्टोरीज का सवाल है वो हमारे सारे नर्सेस के लिए। तो सवाल काफी सिंपल है, व्हाट इज द हाईएस्ट इंटरनेशनल अवार्ड फॉर नर्सेस। नर्सेस के लिए सबसे बड़ा इंटरनेशनल अवार्ड कौन सा है, ये आपको बताना है। बहुत ही सिंपल आंसर है इसका, बहुत ही सिंपल आंसर। तो आप गूगल भी कर सकते हैं, गैस भी कर सकते हैं, तत्काल प्रभाव से तुरंत से पहले अभी के अभी मुझे आप मैसेज कर दीजिए 3311063 पर। मैं सवाल फिर से रिपीट कर देता हूँ, व्हाट इज द हाईएस्ट इंटरनेशनल अवार्ड फॉर नर्सेस। नर्सेस को दिया जाने वाला सबसे बड़ा इंटरनेशनल अवार्ड कौन सा है, ये आपको बताना है। आप मैसेज कर दीजिए, वॉइस नोट भेज सकते हैं, टेक्स्ट मैसेज भेज सकते हैं, तत्काल प्रभाव से तुरंत से पहले अभी के अभी कर दीजिए मैसेज। और यहाँ पे आयुष्मान खुराना और नीति मोहन की आवाज में नौटंकी साला मूवी का गाना।
1: आज

0: 26 million reals dream.
1: अब सिर्फ सेविंग्स नहीं, सपने ग्रो होंगे. जीतिए पूरे 5 million reals cash prizes.
0: जीतने के चार रास्ते. पहला, अपना अकाउंट बैलेंस बढ़ाइए. हर 10,000 reals ग्रोथ पर पाइए एक कूपन.
1: दूसरा, अगर सैलरी 4,000 प्लस है या 50% सेव किया है तो आप एलिजिबल है.
0: तीसरा, नए कस्टमर्स को पहली सैलरी या 10,000 फंडिंग पर गारंटीड कूपन. और चौथा, 9 महीने रेगुलर सैलरी पर पाइए एक एक्स्ट्रा कूपन और मेगा ड्रॉ टिकट.
2: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.
3: Malabar Gold and Diamonds Bindas Morning. Malabar Gold and Diamonds, the responsible jeweler. Malabar Gold and Diamonds की हर jewelry piece ethically sourced होती है और आती है Malabar Promise के साथ, जहां मिलती है complete transparency और भरोसा.
2: Commercial Bank, your future grows when your savings grows. Save more, dream bigger. Win up to 5 million riyals with Commercial Bank.

वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम और मैं हूं आपका मेजबान सुदेव। तो भाई थोड़ी देर पहले सवाल पूछा था मैंने कि नर्सिस को इंटरनेशनली सबसे बड़ा जो अवार्ड मिलता है उसका नाम क्या है, और मेरे पास जो है जवाब आया है। सरिता जी ने मुझे मैसेज किया है, लिखा है कि गुड मॉर्निंग सुदेव जी, फ्लोरेंस नाइटिंगेल मेडल, हैव ए नाइस डे, कल आपका आफ्टरनून में शो ऑसम था, थैंक यू सो मच जी, थैंक यू सो मच। वैसे मुझे तो भरपूर मोहब्बत मिला है लेकिन ये सॉन्ग जब भी सुनो मजा आ जाता है। थोड़ी देर पहले हमने एक रेट्रो सॉन्ग चलाया था, थैंक यू सो मच जी सरिता जी, बहुत अच्छा लगा आपका मैसेज पढ़ के। साथ ही साथ मुझे अली भाई ने मैसेज भेजा, उन्होंने तो बोला कि भाई नहीं आता मुझे सवाल का जवाब, काफी ऑनेस्टली उन्होंने एक्सेप्ट

0: धुरंधर आपके मॉर्निंग को बनाएंगे बिंदास मॉर्निंग। सुनिए आरजे कशिश और सुदेव को हर सुबह 6 से 10 बिंदास मॉर्निंग में ओनली ऑन रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास।
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग। मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पॉन्सिबल ज्वेलर। मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स्ड होती है और आती है मलाबार प्रॉमिस के साथ, जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा।
2: कमर्शियल बैंक, योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस। सेव मोर, ड्रीम बिगर। विन अप टू 5 मिलियन रियाल्स विद कमर्शियल बैंक।

वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑल 106.3 एफएम और मैं हूं आपका मेजबान सुदेव। और भाई यहाँ पे स्टेशन क्लॉक में 7:07 हो रहे हैं और जरा मौसम का हाल देख लेते हैं। अभी का टेम्परेचर जो है देखने में पता ये लग रहा है कि 30 डिग्री सेल्सियस है और हवाएं 11 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से बह रही है और मेरे मन में यही सवाल पनप रहा है कि क्या ये हवा मुझे उड़ा के तो नहीं ले जाएगी। ना मुन्ना ना, ये हवा तुम्हें कहीं नहीं ले जाएगी और आज का हाईएस्ट टेम्परेचर जाएगा 40 डिग्री सेल्सियस, लोएस्ट जाएगा 27 डिग्री सेल्सियस। बाहर निकलते वक्त हाइड्रेशन का ध्यान दीजिएगा, गर्मी जो है धीरे धीरे पास आ रही है, मतलब पहुंच ही चुकी है, पास क्या आना है। बाहर अभी हम 12 बजे खड़े होते हैं तो जो तपती हुई गर्मी और हवा का झोंका जब लगता है तो वाह क्या बताएं, बिल्कुल मजा नहीं आता। तो मैं यही बोलूंगा, ख्याल रखिएगा, पानी अच्छे से पी लीजिएगा और उसके साथ साथ हाइड्रेटिंग फ्रूट्स ये सब आप खा सकते हैं, कंज्यूम कर सकते हैं जो आपके लिए अच्छा है। सेहत का ख्याल रखना बहुत इंपॉर्टेंट है जानी। और यही बात बोलते हुए आगे बढ़ते हैं, आशिकों की कॉलोनी, गाना सुनते हैं ओ रोमियो से। कहीं

0: Radio Honest, your happiness frequency.
1: The big. Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Yes, Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry. Offer valid until 13th June 2026 only. Hurry.
2: Joyalukkas, world's favorite jeweler.
3: सोचो अगर सेविंग से आप बन जाओ मिलियनेयर, कमर्शियल बैंक के सेव एंड विन कैंपेन में भाग लीजिए।
4: हर 10,000 कतरी रियाल सेविंग ग्रोथ पे मिलेगा एक कूपन, या सिर्फ 50% सैलरी सेव करो एंड एंटर द ड्रॉ।
3: न्यू कस्टमर हो तो अकाउंट खोलो और फर्स्ट सैलरी ट्रांसफर पे गारंटीड चांस टू विन,
4: और 9 महीने की कंसिस्टेंट सैलरी ट्रांसफर के साथ मेगा ड्रॉ में एंट्री पक्की।
3: तो फिर सोचना क्या, अगले मिलियनेयर आप हो सकते हो। आज ही शुरू करो सेविंग्स, कमर्शियल बैंक, सेव and win.
0: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.
5: Hi guys, this is Bharat Shetty Khurana, and you are listening to Radio Olive.

0: आरजे कशिश और सुदेव को हर सुबह 6 से 10 बिंदास मॉर्निंग में।
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग। मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पॉन्सिबल ज्वेलर। मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स होती है और आती है मालाबार प्रॉमिस के साथ, जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा।
2: कमर्शियल बैंक, योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस। सेव मोर, ड्रीम बिगर। विन अप टू 5 मिलियन रियाल्स विद कमर्शियल बैंक।

0: वाइस मोनिका उमाई डार्लिंग का फैन बेस तो अलग ही लेवल पर है। एड्रेनलिन पंप कर देने वाला गाना है भाई ये। मतलब ये सीन जब देखा मैंने तो मैं भी ऐसे एकदम एज पे था। काफी बढ़िया गाना, काफी बढ़िया सीन। आप सुन रहे हो रेडियो ऑल 106.3 FM और मैं हूं आपका मेजबान सुदेव। और भाई यहाँ पे मेरे पास जो है थोड़े मैसेजेस आए हैं, जरा देखते हैं। मुझे इदरीस भाई ने जो है मैसेज भेजा है, उन्होंने अपने फोटोज जो है थोड़े क्लिक किए हैं और मुझे भेजे हैं। बहुत ही प्यारे फोटोज हैं यार। जब बात कर रहा था मैं कल और परसों उनसे तो उन्होंने मुझे बताया कि वो फोटो खींचते हैं स्पेशली, भेजते हैं हमारे लिए, मेरे लिए। थैंक यू सो मच इदरीस भाई, बहुत मीन करता है मुझे, मेरे लिए थैंक यू सो मच। और बहुत ही प्यारी प्यारी फोटोज जो है खींची आपने। ऐसे ही अभी सामी भाई का मैसेज भी आया है। सामी भाई ने भी, अरे यार काफी प्यारी फोटोज। मुझे सामी भाई ये बताओ यार कि ये जो व्यू है आपका जिसके आप फोटो भेजते हो मुझे, मिलता कहाँ से आपको? काफी खूबसूरत। और उसके साथ साथ मुझे एक और मैसेज आया है और मैसेज भी मतलब कि काफी प्यारा फोटो आया है, हाईवे का एकदम क्लियर स्काई, बिल्कुल क्लियर रोड, और क्या ही बताऊं मैं, मतलब बहुत ही बढ़िया। और सामी भाई ने मैसेज भेजा है, बोला है कि अस्सलाम वालेकुम सुदेव भाई, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम भाई, सब बढ़िया है, खैरियत? आप बताएं क्या हाल है और कैसी चल रही है जिंदगी? थैंक यू सो मच मैसेज भेजने के लिए, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और मुशीर आलम भाई ने मैसेज भेजा है, उन्होंने वही हाईवे वाला फोटो भेजा था। और मोहम्मद अरमान भाई का मैसेज आया है, उन्होंने बोला है गुड मॉर्निंग बॉस करके, थैंक यू सो मच जी, थैंक यू सो मच, गुड मॉर्निंग, आपको भी काफी बढ़िया और बिंदास दिन में विश करता हूँ। ये फोटोज भेजने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप लोगों ने मेरा मतलब क्या बताऊं मैं, दिन बना दिया, चेहरे पे मुस्कुराहट ला दी, इससे बढ़िया और क्या हो सकता है। थैंक यू सो मच जी, थैंक यू सो मच मुशीर आलम भाई, थैंक यू सो मच। और आप सभी को बहुत ही बहुत ही बहुत ही ज्यादा बढ़िया वाला थैंक यू। और सोना शंकर जी का मैसेज भी आया है, उन्होंने लिखा है गुड मॉर्निंग सुदेव भाई एंड कशेश, गुड मॉर्निंग सोना जी, उम्मीद करता हूँ आपका दिन जो है काफी बढ़िया और बिंदास जाए। थोड़ी देर में गानों के उस पार जब हम आएंगे तो आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हेल्थ रिलेटेड फैक्ट लेकर आएंगे, तो तैयार हो जाइए, स्टे ट्यून्ड है रेडियो ऑल 106.3 FM और मैं हूँ आपका मेजबान सुदेव, जियो बिंदास।
1: अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है।
2: अभी बजाएगा ना भिड़ो

0: वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव। और भाई यहाँ पे जो है, मैंने बोला था गानों के उस पार जब हम आएंगे तो फिटनेस से रिलेटेड एक बात जो है लेकर आएंगे। तो चलिए रेडी हो जाइए, फिट है तो हिट है के लिए।
1: फिट है तो हिट है।
0: तो भाई फिट है तो हिट है में आज हम बात करेंगे फ्रेश एयर कॉग्निटिव फंक्शन को कैसे इंप्रूव करता है। रिसर्च ये दिखाती है कि क्लोज्ड इंडोर स्पेसेस में लॉन्ग टाइम रहने से या ज्यादा देर तक रहने से CO2 लेवल जो है ग्रेजुअली इंक्रीज हो सकते हैं, जिससे ड्राउजीनेस, लो कॉन्सेंट्रेशन और मेंटल फटीग फील हो सकती है। जब आप फ्रेश आउटडोर में जाते हैं तो बेटर एयर सर्कुलेशन और ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी ब्रेन को और एफिशियंटली जो है सपोर्ट करता है। अब फ्रेश एयर एक्सपोजर से क्या क्या होता है? अलर्टनेस और फोकस इंप्रूव हो जाता है, मेंटल फटीग रिड्यूस हो जाता है, मूड और रिएक्शन टाइम जो है बेटर हो सकता है। और आउटडोर एनवायरनमेंट का एक और बेनिफिट है कि वहां पे नेचुरल लाइट होती है और मूवमेंट ज्यादा होगी और सेंसरी स्टिमुलेशन भी बैलेंस रहेगा। तो ये कॉम्बिनेशन जो है ब्रेन को रीसेट कर देता है, मतलब ऐसा एक इफेक्ट फील होता है। इसलिए 5 से 10 मिनट का आउटडोर ब्रेक बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके प्रोडक्टिविटी को इंप्रूव करने के लिए, स्टडी या फिर वर्क के लिए, फोकस बेटर बनाने के लिए, स्ट्रेस को कम करने के लिए। तो मोटी मोटी बात ये है भाई कि फ्रेश एयर सिर्फ लंग्स के लिए नहीं, ब्रेन के परफॉर्मेंस और क्लैरिटी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो बॉस लोग हैं, सुनो मेरी बात को, बाहर भेजो अपने एम्प्लॉयज को, बोलोगी फ्रेश एयर लेकर आ चल करके, ठीक है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। वैसे जोक्स साइड अगर हम देखें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है प्रोडक्टिविटी इंप्रूव करने के लिए एक ऐसा सिस्टम रेडी करना जहां पे लोग कंपेल्ड फील ना करें काम करने के लिए, इंस्पायर्ड फील करें, मोटिवेटेड अपने आप फील करें। तो जो भी सिस्टम्स बहुत टाइम से बने हुए हैं वो हटाने के टाइम आ चुके हैं, नए सिस्टम्स का वक्त आ चुका है। देखते हैं नए सिस्टम्स कब तक आएंगे। अब नहीं आए तो भाई है ना, सेट ही कर देगा, कोई टेंशन नहीं। अभी फिलहाल यहाँ पे ये बात बोलते हुए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।

वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम और मैं हूं आपका मेजबान सुदेव। भाई यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस ने इंटरनल ऑडिट ऑपरेशंस के लिए एक नया डिजिटल ऑडिट प्लेटफॉर्म जो है लॉन्च किया है। ये प्लेटफॉर्म स्टेट ऑडिट ब्यूरो के कोलैबोरेशन में डेवलप किया गया है। लॉन्च इवेंट को हिज एक्सीलेंसी इब्राहिम बिन अली बिन ईसा अल मुहन्नदी ने पैट्रनेज दिया और मिनिस्ट्री के सीनियर ऑफिशियल्स भी वहां पे मौजूद थे। प्लेटफॉर्म का मेन एम जो है वो है गवर्नेंस को स्ट्रांग बनाना, इंटरनल मॉनिटरिंग को इम्प्रूव करना और ऑडिट प्रोसेस को डिजिटल और एफिशिएंट बनाना। इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट के डायरेक्टर नजला फहद दलवान के मुताबिक सिस्टम मैनुअल वर्कफ्लो को रिप्लेस करके एक्यूरेसी, एफिशिएंसी और रिस्क मैनेजमेंट को जो है और बेटर कर सकता है। तो यही बात बताते हुए, यही अपडेट बताते हुए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।

0: इन्हें रेगुलर सैलरी पर पाइए एक एक्स्ट्रा कूपन और मेगा ड्रॉ टिकट।
1: गाय के साथ सीएनजी हो या फ्यूल टाइप बसेस, 64 सीटर या कॉम्पैक्ट 26 सीटर, पाइए बेहतर माइलेज और मैक्सिमम कंफर्ट। कारमेल ग्रुप के साथ अब सफर विदाउट सफर। विजिट कारमेल ग्रुप नाउ।

0: धुरत दर आपके मॉर्निंग को बनाएंगे बिंदास मॉर्निंग। सुनिए आरजे कशिश और सुदेव को हर सुबह 6 से 10 बिंदास मॉर्निंग में ओनली ऑन रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास मॉर्निंग।
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग। मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पॉन्सिबल ज्वेलर। मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स्ड होती है और आती है मलाबार प्रॉमिस के साथ, जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा।
2: कमर्शियल बैंक, योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस। सेव मोर, ड्रीम बिगर। विन अप टू 5 मिलियन रियाल्स विद कमर्शियल बैंक।

0: Qatar's number one radio station. Radio Olive 106.3 FM.
1: सोचो अगर सेविंग से आप बन जाओ मिलियनेयर, कमर्शियल बैंक के सेव एंड विन कैंपेन में भाग लीजिए।
2: हर 10,000 कतरी रियाल सेविंग ग्रोथ पे मिलेगा एक कूपन, या सिर्फ 50% सैलरी सेव करो एंड एंटर द ड्रॉ।
1: न्यू कस्टमर हो तो अकाउंट खोलो और फर्स्ट सैलरी ट्रांसफर पे गारंटीड चांस टू विन,
2: और 9 महीने की कंसिस्टेंट सैलरी ट्रांसफर के साथ मेगा ड्रॉ में एंट्री पक्की।
1: तो फिर सोचना क्या, अगले मिलियनेयर आप हो सकते हो। आज ही शुरू करो सेविंग्स, कमर्शियल बैंक, सेव एंड विन।
3: गाय के साथ सीएनजी हो या फ्यूल टाइप बसेस, 64 सीटर या कॉम्पैक्ट 26 सीटर, पाइए बेहतर माइलेज और मैक्सिमम कंफर्ट। कारमेल ग्रुप के साथ अब सफर विदाउट सफर। विजिट कारमेल ग्रुप नाउ।
4: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.
5: Hi, this is Amitabh Bachchan and you're listening to...

0: वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम और मैं हूं आपका मेजबान सुदेव। स्टेशन क्लॉक में अभी 8:17 हो रहे हैं और यहाँ पे जो है हम बात करते हैं कल के मैच के बारे में। कल हुआ था पंजाब और दिल्ली के बीच में मैच, जहाँ पे काफी चर्चा हुई इस मैच की यार, क्योंकि वो कहते हैं ना कि दोनों टीम ने दिलो जान लगा दिया इस मैच में। पंजाब ने 210 का जो है स्कोर बनाया, 211 चाहिए थे दिल्ली को जीतने के लिए। दिल्ली ने 216 बनाए, 7 विकेट उनके गिर चुके थे, ताला फॉर रीजन इसलिए जीती थी ना और 3 विकेट से जो है दिल्ली ने इस मैच को जीत लिया। 6 बॉल बचे हुए थे, यानी कि एक पूरा ओवर बचा हुआ था और काफी बढ़िया मैच था यार। बहुत ही बढ़िया तरीके से जो है इस मैच को खेला गया। अभी अगर हम पंजाब के साइड से देखें तो श्रेयस अय्यर ने 59 रन स्कोर किए थे, प्रियांश आर्या ने 56 और कूपर कनॉली ने 38 रन स्कोर किए थे। दिल्ली कैपिटल्स के लिए अक्षर पटेल ने 56 स्कोर किया, डेविड मिलर ने 51 स्कोर किया, आशुतोष शर्मा ने 24 रन स्कोर किए और अच्छी तरीके से जो है उन्होंने पार करा दिया दिल्ली को जो है विनिंग टारगेट के पास। और यहाँ मैं बताना चाहूंगा यार, ये दिल्ली के लिए बहुत ही इज्जत का मैच था, मतलब इज्जत का सवाल था इस मैच में और बहुत ही अच्छे तरीके से जो है दिल्ली ने परफॉर्म किया। सही में दिल खुश हो गया मेरा ये देख के। अभी हम जरा स्टैंडिंग देखते हैं। अगर हम टेबल की बात करें तो टॉप में है बैंगलोर, फिर है हैदराबाद, थर्ड पोजिशन में है गुजरात और फोर्थ पोजिशन में है पंजाब और फिफ्थ पोजिशन में है यहाँ पे चेन्नई। और उसके साथ अगर हम देखें तो मुंबई है 9th पोजीशन में, लखनऊ है 10th पोजीशन में, 6th पोजीशन में है राजस्थान, 7th पोजीशन में है दिल्ली और 8th पोजीशन में है कोलकाता। अब देखिए धीरे धीरे जो है प्लेऑफ्स के करीब हम आते जा रहे हैं और यहाँ पे अगर मेरा अनुमान अगर सही है तो चेन्नई आने वाले सारे मैचेस अगर जीतती है और ऊपर जो भी टीम्स है वो सारे मैचेस हारती है एक एक करके तो चेन्नई के चांसेस बढ़ जाते हैं वही प्लेऑफ में जाने के लिए। बस फिंगर्स क्रॉस्ड है भाई, देखते हैं क्या होता है। देखिए आई एम अ वेरी सिंपल मैन, चेन्नई जीतती है मैं खुश होता हूँ, चेन्नई हारती है मैं दुखी होता हूँ फिलहाल देखते हैं क्या होता है। आज के मैच के बारे में बात करेंगे थोड़ी देर में, अभी फिलहाल यही बात करते हुए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।
1: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर।
2: क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है कूल सॉन्ग।

सुनवी चौहान, विशाल और श्रीकर राजीवानी की आवाज में सुना हमने कैश मूवी का टाइटल ट्रैक। आप सुन रहे हो रेडियो ऑल 106.3 एफएम और मैं हूं आपका मेजबान सुदेव। और भाई आज के मैच के बारे में बात करते हैं। आज है गुजरात और हैदराबाद के बीच में मैच और यहाँ पे विन प्रोबेबिलिटी के बारे में अगर हम बात करें तो 51% जो है हैदराबाद के साथ है, 49% गुजरात के साथ है। और मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि हैदराबाद ही जो है ये मैच जीतेगी। काफी कंफर्टेबल पोजीशन में है हैदराबाद इस वक्त टेबल के टॉप में और अच्छी तरीके से जो है उन्होंने अपने पोजीशन को कंसोलिडेट कर रखा है यहाँ पे। सॉरी गलती हो गई, एक्चुअली टेबल के सेकंड पोजीशन में हैदराबाद, बैंगलोर था फर्स्ट और 14 पॉइंट्स है हैदराबाद के पास और गुजरात के पास भी 14 पॉइंट्स है। सेकेंड में हैदराबाद है, थर्ड में गुजरात है और यहाँ पे देखते हैं कि अगर गुजरात जीत जाती है तो गुजरात ऊपर चली जाएगी, हैदराबाद नीचे आ जाएगी एक पोजीशन। दोनों जो टॉप थ्री टीम्स है, दोनों नहीं तीनों जो टॉप थ्री टीम्स हैं 14 पॉइंट के साथ है। इनके रन रेट में फर्क है, बैंगलोर का रन रेट भाई बहुत ही क्रेजी है, प्लस 1.103 का है। उसके बाद है हैदराबाद का प्लस 0.737, फिर आता है गुजरात का रन रेट जो है प्लस 0.228। अभी काफी टाइट मुकाबला है, देखते हैं क्या हो सकता है क्योंकि यूजुअली क्या होता है कभी कभी हमें पता चल जाता है कि हाँ भाई प्लेऑफ में कौन आने वाला है, मगर इस बार इतना टाइट है मामला, इतना टाइट है कि इतना इजी नहीं है प्रेडिक्ट कर पाना। एनीवे देखते हैं क्या होता है। फिलहाल यहाँ पे आपके लिए तोची रैना की आवाज में आयशा मूवी का गाना वेट कर रहा है, तो गाना सुनते हैं, एक साथ बैठ कर एंजॉय करते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।

0: नमस्कार, मैं हूँ आर माधवन।
1: हाय, दिस इज विपाशा बासु।
2: हाय, मैं राजकुमार राव।
3: हाय, मैं हूँ प्रियंका चोपड़ा।
4: हाय, दिस इज दिशा पार्टी।
0: आप सुन रहे हैं रेडियो 106.3 FM।

मीत ब्रोज और नेहा कक्कर की आवाज में सुना हमने लंबरगिनी। देखिए लंबरगिनी आएगा, एनिमल का गाना आएगा, ऐसे बहुत सारे गाने आएंगे जो सिमिलर साउंड करेंगे, मगर हम तो फैन हैं ओजी जगजीत सिंह जी और कल्पना सिंह जी के परफॉर्मेंस के। भाई अगर आपने वो नहीं देखा तो जरूर देखेगा, आप जाके यूट्यूब में सर्च कर सकते हैं पंजाबी टप्पे जगजीत सिंह, आपको एक वीडियो दिखेगा। क्या बढ़िया एक कॉम्बिनेशन है दोनों का, मतलब सुन के मजा आ गया था। काफी लेजेंडरी लोग, उनको याद करते हुए उनको सलाम करते हुए जरा वापस आते हैं यहाँ पे। बहुत ही इंपॉर्टेंट एक अपडेट जो है हमारे पास आया है, मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स एंड यूथ और कतर करियर डेवलपमेंट सेंटर ने यूथ एम्पावरमेंट और करियर रेडीनेस को बूस्ट करने के लिए एक एमओयू जो है वो साइन किया है। अग्रीमेंट का फोकस कतर के नेशनल यूथ पॉलिसी एक्शन प्लान को सपोर्ट करना और लेबर मार्केट के लिए स्किल्ड नेशनल टैलेंट को तैयार करना है। दोनों ऑर्गेनाइजेशन करियर गाइडेंस प्रोग्राम्स, वोकेशनल ट्रेनिंग, वर्कशॉप्स और कैपेसिटी बिल्डिंग इनिशिएटिव्स पर मिलकर काम करेगी। एमओयू में पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज को ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में इंक्लूड करने और एम्प्लॉयमेंट फोकस्ड स्किल डेवलपमेंट पर भी जोर दिया गया है। ऑफिशियल्स के मुताबिक पार्टनरशिप का एम जो है वो है यूथ को फ्यूचर जॉब मार्केट के लिए कॉम्पिटिटिव, स्किल्ड और करियर अवेयर बनाना, जो नेशनल विजन 2030 को सपोर्ट करेगा। तो यही अपडेट बताते हुए हम आगे बढ़ते हैं एक फ्रेश सॉन्ग ऑफ द आवर आपके लिए। स्टे ट्यून्ड यह रेडियो ऑलवे 106.3 FM और मैं हूं आपका मेजबान सुदेव। जियो बिंदास।

0: Radio Honest, your happiness frequency.
1: The big. Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Yes, Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry. Offer valid until 13th June 2026 only. Hurry!
2: Joyalukkas, world's favorite jeweler.
3: Commercial Bank presents CB 2026 Million Rials Dream.
4: अब सिर्फ सेविंग्स नहीं, सपने ग्रो होंगे. जीतिए पूरे 5 मिलियन रियाल्स कैश प्राइजेस.
3: जीतने के चार रास्ते. पहला, अपना अकाउंट बैलेंस बढ़ाइए. हर 10,000 रियाल्स ग्रोथ पर पाइए एक कूपन.
4: दूसरा, अगर सैलरी 4,000 प्लस है या 50% सेव किया है तो आप एलिजिबल है.
3: तीसरा, नए कस्टमर्स को पहली सैलरी या 10,000 फंडिंग पर गारंटीड कूपन. और चौथा, 9 महीने रेगुलर सैलरी पर पाइए एक एक्स्ट्रा कूपन और मेगा ड्रॉ टिकट.

0: धुरंधर आपके मॉर्निंग को बनाएंगे बिंदास मॉर्निंग। सुनिए आरजे कशिश और सुदेव को हर सुबह 6 से 10 बिंदास मॉर्निंग में ओनली ऑन रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास।
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग। मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पॉन्सिबल ज्वेलर। मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स्ड होती है और आती है मलाबार प्रॉमिस के साथ, जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा।
2: कमर्शियल बैंक, योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस। सेव मोर, ड्रीम बिगर। विन अप टू 5 मिलियन रियाल्स विद कमर्शियल बैंक।

वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव। तो भाई हम जानते हैं कि आए दिन आए हफ्ते कतर में कुछ ना कुछ नया हो रहा है, कुछ ना कुछ नए इवेंट्स आ रहे हैं। तो ऐसे ही एक इवेंट के बारे में जो है मैं बात करना चाहूंगा, मगर बात करने के लिए यहाँ पे मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ और भी लोग होंगे। थोड़ी देर में जो है वो हमारे स्टूडियो में पहुंच जाएंगे बात करने के लिए, गुफ्तगू करने के लिए। तो क्या है वो इवेंट, किस चीज के बारे में है, कौन कौन वहां जा सकता है, क्या क्या मिलेगा आपको अगर आप वहां गए, तो इन सब चीजों के बारे में डिटेल में जो है हम बात करेंगे। मगर उसके पहले मैं यहाँ पे एक चीज आपको याद दिलाना चाहूंगा, वो यही है कि आज इंटरनेशनल नर्सेस डे है। और कल जो है हम रियादा मेडिकल सेंटर गए थे, वहाँ पे हमने कुछ नर्सेस के साथ जो है थोड़ा वक्त बिताया, स्पेंड किया, हमने गेम्स खेले, उनके साथ चिल किया, इंजॉय किया, रिलैक्स किया। और हम उन्हें यही बोल रहे थे कि हम एक्चुअली बहुत ही ज़्यादा ग्रेटफुल हैं आप लोगों के सर्विसेज के लिए, क्योंकि जब भी कोई हेल्थ क्राइसिस आया है, चाहे कोविड हो, कुछ भी हो, जिस तरीके से दीवार बन के वो सामने खड़े हो गए थे हमारे, ताकि हम तक कुछ ना आ पाए, बहुत ही काबिले तारीफ वाली बात है। तो उनके एफर्ट्स को सल्यूट करते हुए मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आप आज किसी नर्स से मिलते हैं, ऐसा कुछ होता है, कहीं मिलना जुलना हो जाता है, तो प्लीज़ अपने रिगार्ड ज़रूर कन्वे कीजिएगा, थैंक्स ज़रूर बोलेगा, ग्रैटिट्यूड ज़रूर एक्सप्रेस कीजिएगा। और यही बात बोलते हुए आगे बढ़ते हैं, और मैं बता रहा हूँ कि थोड़ी ही देर में हमारे स्टूडियो में जो है गेस्ट पहुँच जाएंगे। और उसके साथ साथ अब हमारे इंस्टाग्राम पेज को भी चेकआउट कर सकते हैं, कल की जो नर्सेस के साथ जो हमने एक एन्जॉयमेंट सेशन रखा था, हैप्पीनेस लाउंज रखा था, जहाँ पे हम गए, एन्जॉय किया हमने उनके साथ, टाइम बिताया उनके साथ, उसका एक छोटा सा ग्लिम्स आपको हमारे इंस्टाग्राम पेज पर देखने को भी मिल सकता है। तो बने रहिए हमारे साथ। और यही बात बोलते हुए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।

0: You are listening to Radio Olive 106.3 FM.
1: सोचो अगर सेविंग से आप बन जाओ मिलियनेयर, कमर्शियल बैंक के सेव एंड विन कैंपेन में भाग लीजिए।
2: हर 10,000 कतरी रियाल सेविंग ग्रोथ पे मिलेगा एक कूपन, या सिर्फ 50% सैलरी सेव करो एंड एंटर द ड्रॉ।
1: न्यू कस्टमर हो तो अकाउंट खोलो और फर्स्ट सैलरी ट्रांसफर पे गारंटीड चांस टू विन,
2: और 9 महीने की कंसिस्टेंट सैलरी ट्रांसफर के साथ मेगा ड्रॉ में एंट्री पक्की।
1: तो फिर सोचना क्या, अगले मिलियनेयर आप हो सकते हो। आज ही शुरू करो सेविंग्स, कमर्शियल बैंक, सेव एंड विन।
3: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग। मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पॉन्सिबल ज्वेलर। मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स होती है और आती है मलाबार प्रॉमिस के साथ, जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा।
4: कमर्शियल बैंक, योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस। सेव मोर, ड्रीम बिगर, विन अप टू 5 मिलियन रियाल्स विद कमर्शियल बैंक।

0: माँ मुझे छोटे एड ब्रेक्स दिखाई दे रहे हैं माँ।
1: ऑल एफ शॉर्ट ब्रेक।
0: पहला जादू।
2: द बिग बिग Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Yes, Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry. Offer valid until 13th June 2026 only. Hurry!
3: Joyalukkas, world's favorite jeweler.
4: गाय के साथ सीएनजी हो या फ्यूल टाइप बसेस 64 सीटर या कॉम्पैक्ट 26 सीटर पाइए बेहतर माइलेज और मैक्सिमम कंफर्ट कारमेल ग्रुप के साथ अब सफर विदाउट सफर विजिट कारमेल ग्रुप नाउ
5: ग्रो योर ब्रांड अक्रॉस कतर्स की ऑडियंसेस कनेक्ट विद हिंदी लिसनर्स ऑन रेडियो ऑलिव 106.3 FM मलयालम ऑडियंसेस ऑन रेडियो सुनो 91.7 FM एंड अरबिक लिसनर्स ऑन तत्कार 107.4 FM ऑन एयर विजिबिलिटी सपोर्टेड बाय परफॉर्मेंस ड्रिवन डिजिटल मार्केट Marketing campaigns simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.
6: Malabar Gold and Diamonds Bindas Morning. Malabar Gold and Diamonds, the responsible jeweler. Malabar Gold and Diamonds की हर jewelry piece ethically sourced होती है और आती है Malabar Promise के साथ, जहाँ मिलती है complete transparency और भरोसा.
5: Commercial Bank, your future grows when your savings grows. Save more, dream bigger. Win up to 5 million riyals with Commercial Bank.
7: Hey!

वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव। और भाई यहाँ से टाटा बाबाई करके निकलने का वक्त आ चुका है, क्योंकि 10 बजने वाले हैं और मुस्कान आ जाएगी। तो मुस्कान का खुली बाहों से आपको स्वागत करना है। जितना प्यार मुझे दिया है उतना और उससे ज्यादा प्यार मुस्कान को देना है। और मैं जाते जाते आपको यही याद दिलाना चाहूंगा कि सबसे पहले तो आप रेडियो ऑलिव के इंस्टाग्राम पेज को अगर आपने फॉलो नहीं किया तो जरूर कीजिए। एक ही बार फॉलो बटन दबाना है मगर, तो जाइए फॉलो कीजिए, पोस्ट चेकआउट कीजिए, कंटेंट चेकआउट कीजिए, अपने फीडबैक्स जो हैं आप हमको बता सकते हैं हमें इंस्टाग्राम पर मैसेज करके। साथ ही साथ 3311063 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर भी है। आपको कैसा लगा शो सुन के आप मुझे बेझिझक बेखौफ तरीके से बता सकते हैं। और उसके साथ साथ मैं यही याद दिलाना चाहूंगा कि अपना ख्याल रखना, अपने खास लोगों का ख्याल रखना और हमें जरा दुआओं में याद रखना। तो फिर मिलते हैं कल सुबह 6 बजे, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, हैव अ ग्रेट डे, कीप ऑन एंजॉयिंग एंड कीप ऑन सेइंग जियो बिंदास।

0: your daily surprise is here. अपना हाला रिचार्ज करो और पाओ फ्री डेटा या मिनट्स का सरप्राइज. क्लेम करो Ooredoo ऐप पर. ऑफर वैलिड है 31st मई तक. एक्सपीरियंस मोर विद Ooredoo.
1: This hour is brought to you by
2: Homes R Us. We complete your home.

Good morning. You are listening Radio Olive 106.3 FM. This is me, Muskan, with you. Our show ka naam hai Life Must Hai, jahan life ki serious problem bhi thodi si, you know, must si lagti hai. So aaj ka ek sawal hai mera aapse ki adult life mein asli motivation kya hota hai? Dreams ya fir passion ya fir salary date? Kyunki honestly, matlab agar main aaj ki baat karun to alarm sunte hi aadmi na thoda sa aise आलसी हो जाता है. उसको लगता है यार 5 मिनट और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पहले अलार्म में ही ऐसे उठ जाते हैं जैसे उनको कोई यू नो मशीन की तरह आदत हो. और फनी थिंग ये है कि बचपन में हम सोचते थे कि बड़े होके फ्रीडम मिलेगी, और अब बड़े होके क्या मिला? बिल्स, ईमेल्स, बैक पेन्स और ऊपर से स्लीप भी इनकम्प्लीट. सो आजकल का रूटीन थोड़ा सा कुछ ऐसे ही है, लेट नाइट स्क्रॉलिंग, सुबह जल्दी उठना और बोलना कि आज से हेल्दी लाइफ स्टार्ट. लेकिन होता क्या है, काफ़ी फास्ट हो गई है यार लाइफ. प्रोडक्टिविटी यू नो होनी चाहिए, सक्सेसफुल बनना है, सॉर्टेड दिखना है, और इसी प्रेशर में हम रेस्ट करना भूल जाते हैं. सो स्लो ब्रेकफास्ट, फेवरेट गाना या चाय के साथ एक यू नो एक चुप्पी जैसे कहते हैं ना, उसे इंजॉय करना, वो सब हम भूल गए हैं. और इसी चिल्ड वाइब के साथ आई विल सी कि स्टार्ट करते हैं आज का शो. वी विल टॉक अबाउट लॉट ऑफ न्यू थिंग्स. आप कहीं मत जाइए, सुन रहे हो रेडियो ऑलिव, दिस इज मी मुस्कान विद यू. स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास.

0: सो कतर एयरवेज एक बार फिर से एविएशन वर्ल्ड में कुछ हिस्ट्री क्रिएट कर रही है. यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल 106.3 एफएम. दिस इज मी मुस्कान विद यू. शो का नाम है लाइफ मस्त है. सो 22nd जुलाई 2026 से कतर एयरवेज ऑफिशियली जो कुछ कंट्रीज हैं वहां पर पहुंचने वाली है, स्पेशली लैटिन अमेरिका में एक्सपेंशन किया है. और इंटरेस्टिंगली कतर एयरवेज जो है वो फर्स्ट गल्फ की ऐसी एयरलाइन बन गई है जो डायरेक्ट वेनेजुएला तक जा रही है, और फर्स्ट मिडिल ईस्ट एयरलाइन है जो डायरेक्टली कनेक्ट कर रही है कुछ कंट्रीज से जो इस टाइम पर लैटिन अमेरिका में है. मतलब दोहा का ग्लोबल मैप और बड़ा हो रहा है, और ऑनेस्टली कतर एयरवेज की ग्रोथ फैसिनेटिंग है. एक एयरलाइन जो मतलब हर जगह से आपको मिल जाएगी और वर्ल्ड कनेक्टिविटी का सिंबल बन चुकी है. और न्यू रूट्स का बिगेस्ट बेनिफिट क्या है? स्मूथ कनेक्शन. सो पैसेंजर्स नाउ ईजियर यू नो टू कनेक्ट जो ऑस्ट्रेलिया, जापान, चाइना, यूएई हर जगह जा सकते हैं थ्रू हमद इंटरनेशनल एयरपोर्ट. और ऑनेस्टली हमद इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी अब सिर्फ एयरपोर्ट नहीं है, पूरा एक्सपीरियंस बन चुका है. लग्जरी लाउंजेस हैं, आर्ट इंस्टॉलेशन है, स्मार्ट टेक्नोलॉजीज है, और कभी कभी लगता है कि फ्लाइट डिले भी हो तो मैनेजेबल है, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. सो इसी के साथ आप मुझे बताओ अपने एयरपोर्ट एक्सपीरियंसेस. जब आप यहाँ से किसी दूसरी कंट्री के लिए जाते हो तब कैसे अपना टाइम स्पेंड करते हो एट द एयरपोर्ट? 3311063 इज माई नंबर. यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव. स्टे ट्यून. जियो बिंदास.
1: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द

0: 26 million reals dream.
1: अब सिर्फ सेविंग्स नहीं, सपने ग्रो होंगे. जीतिए पूरे 5 million reals cash prizes.
0: जीतने के चार रास्ते. पहला, अपना अकाउंट बैलेंस बढ़ाइए. हर 10,000 reals ग्रोथ पर पाइए एक कूपन.
1: दूसरा, अगर सैलरी 4,000 प्लस है या 50% सेव किया है तो आप एलिजिबल है.
0: तीसरा, नए कस्टमर्स को पहली सैलरी या 10,000 फंडिंग पर गारंटीड कूपन. और चौथा, 9 महीने रेगुलर सैलरी पर पाइए एक एक्स्ट्रा कूपन और मेगा ड्रॉ.

0: लाइफ मस्त है हर सुबह 10 से 1 सिर्फ रेडियो ओलिव पर, क्योंकि लाइफ मस्त है।
1: इन एसोसिएशन विद होम स्टार अस, वी कंप्लीट योर होम।

सो फैशन की दुनिया में अगर मैं बात करूं तो मेमोरी लॉस का एक शिकार हो चुका है, क्योंकि जो चीज़ें हम 15 साल पहले क्रिंज बोलते थे वो सडनली ट्रेंड बन रहा है। और लेटेस्ट कमबैक पता है क्या है? केप्री पैंट्स। यस, 2000s वाली केप्री ऑफिशियली वापस आ चुकी हैं और जेन जी उन्हें फुल कॉन्फिडेंस के साथ स्टाइल भी कर रहे हैं। इंटरेस्टिंग थिंग ये है कि फैशन साइकिल यूजुअली 20 साल में रिपीट होता है, इसीलिए लो राइज जीन्स, टाइनी बैग्स, मटेरियल, अगर मैं मेटेलिक फैशन की बात करूँ या केपरीज की बात करूँ, सब वापस आ रहा है। यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल 106.3 FM, मैं हूँ मुस्कान और शो का नाम है लाइफ मस्त है। पर आई पर्सनली डोंट लाइक केपरी, आई डोंट नो वाई, बट मुझे नहीं पसंद। अगर मैं बात करूँ आपकी तो आप मुझे बताओ 3311063 पर, क्या आपको केपरी पैंट्स पसंद है? ओल्ड कैमरा एस्थेटिक्स, विंटेज स्टाइल, या फिर ऐसा कोई वाइब जो आपको लगता है कि नहीं यार ये तो मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि मॉडर्न लाइफ ऑलरेडी बहुत फ्यूचरिस्टिक लग रही है। और केपरीज की बिगेस्ट एडवांटेज क्या है? कम्फर्ट है, नॉट टू लॉन्ग, नॉट टू शॉर्ट। फैशन जब प्रैक्टिकल हो जाए तो ट्रेंड ना ज़्यादा सर्वाइव करता है। तो आप मुझे बताओ कि बॉलीवुड में इस कमबैक से आपको कैसा लग रहा है? यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव, मैं हूँ मुस्कान, स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास।

0: Story of the day. Story of the day. Save one life, you're a hero. Save hundreds of life, you're a nurse. और इसीलिए हर साल 12 मई को दुनिया सेलिब्रेट करती है इंटरनेशनल नर्सेस डे, क्योंकि आज ही के दिन जन्म हुआ था फ्लोरेंस नाइटिंगेल का, द लेडी विद द लैम्प. वो लेडी जो हर रात में लैम्प लेकर वुंडेड सोल्जर के पास जाती थी, तभी से नर्सिंग प्रोफेशन नहीं कंपैशन का दूसरा नाम बन गया. तो आज उन सब रियल लाइफ नाइटिंगेल्स को सल्यूट, जो हर रोज किसी अनजान इंसान के लिए अपनी नींद, अपना कंफर्ट सब भूल जाती हैं. हैप्पी इंटरनेशनल नर्सेस डे टू द हैंड्स दैट हील एंड द हार्ट्स दैट केयर.
1: You are listening to Radio Olive 106.3 FM. गाय के साथ सीएनजी हो या फ्यूल टाइप बसेस, 64 सीटर या कॉम्पैक्ट 26 सीटर, पाइए बेहतर माइलेज और मैक्सिमम कंफर्ट. कारमेल ग्रुप के साथ अब सफर विदाउट सफर. विजिट कारमेल ग्रुप नाउ. Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.

0: लाइफ मस्त है हर सुबह 10 से 1 सिर्फ रेडियो ओलिव पर, क्योंकि लाइफ मस्त है
1: इन एसोसिएशन विद होम्स आर अस, वी कंप्लीट योर होम।

0: So 1982 ki internationally loved bestseller, which is such a beautiful book. You are listening Radio All 106.3 FM. मैं हूँ मुस्कान और शो का नाम लाइफ मस्त है. So आज की बुक जो है वो मैजिकल भी है, इमोशनल भी है और सिनेमैटिक भी है. You are listening Radio All 106.3 FM. This is me मुस्कान with you और शो का नाम है लाइफ मस्त है.
1: Okay. Book in focus with मुस्कान.
0: सो अगर इस किताब की बात करूँ तो उसका नाम है द हाउस ऑफ दी स्पिरिट्स. और ये नॉर्मल फैमिली ड्रामा नहीं है, ये एक इमोशनल यूनिवर्स है. स्टोरी मल्टीपल यू नो जनरेशन के अराउंड रिवॉल्व करती है और इसमें है लव, पॉलिटिक्स, फैमिली ट्रॉमा और वुमेन स्ट्रेंथ. मतलब सारी वो चीज़ें जो आज के टाइम पर हम ढूंढ रहे हैं, सब ब्यूटिफुली कनेक्टेड है. और इसका मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट क्या है, मैजिकल रियलिज्म. मतलब स्टोरी रियलिस्टिक भी लगती है और बहुत ड्रीमी भी लगती है. कभी कभी स्ट्रेंज जो मोमेंट्स हैं वो आते हैं, लेकिन वो स्टोरी को और भी ज़्यादा इमोशनल बनाकर जाते हैं. और ऑनेस्टली स्ट्रॉन्ग फीमेल कैरेक्टर्स की वजह से ये बुक डेकेड्स बाद भी रेलेवेंट फील होती है. ये बुक सिर्फ इवेंट नहीं है बल्कि इमोशनल इनहेरिट होने की स्टोरी है. और रीडिंग एक्सपीरियंस भी काफ़ी विजुअल लगता है, मतलब जैसे कोई फिल्म चल रही है. इसीलिए क्रिटिक्स ऑफन बोलते हैं कि सम बुक्स आर रीड, सम बुक्स आर एक्सपीरियंस्ड. और ये जो किताब है ये एक्चुअली एक एक्सपीरियंस ही है. सो आप मुझे बताओ कि इस टाइम पर आप कौन सी किताब है जो पढ़ रहे हो. यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव, मैं हूं मुस्कान, स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास.

0: Hi, मैं हूँ सोहाली खान एंड यू लिस्टिंग टू रेडियो ऑलिव जियो बिंदास.
1: ऑलिव सुनो रेडियो नेटवर्क कतर्स नंबर वन एशियन रेडियो नेटवर्क. Unlock your child's potential with Brilliant Qatar. 15 years of excellence and trust. Expert coaching for NEET, JEE and CBSE. Offline and online options. Our sixth branch is now open at Al Wakra. For more details, call 500-561-23.

तो भाई सवाल ये है कि आज शुभमन जो है वो सेंचुरी लगाएंगे या फिर ईशान का जो बैट है वो चमकेगा, क्योंकि आज होने वाला है गुजरात वर्सेस हैदराबाद। यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल 106.3 एफएम, दिस इज मी मुस्कान विद यू और शो का नाम है लाइफ मस्त है। भाई हर दिन मैचेस की हम बात करते हैं यहाँ पर, और आज शाम को लाइव मैच होने वाला है गुजरात वर्सेस हैदराबाद के बीच में। सो आई नो कि इवनिंग शो में सिमरन के साथ आप बहुत सारी नई नई चीज़ें जो है वो सुनते हैं, और उसके बीच में आपको स्कोर अपडेट्स भी पता चल ही जाते हैं। अब चाहे आप ड्राइव कर रहे हैं या फिर ऑफिस में बैठे हैं, यू नो एवरीथिंग यहाँ पर आपको सुनने के लिए मिल जाएगा। पर अगर कल के मैच की बात करूँ तो इट वॉज दिल्ली वर्सेज पंजाब, जिसमें दिल्ली ने मैच जीता 216 रन 7 विकेट के नुकसान और 19 ओवर में। अब 3 विकेट के साथ जीत मिली है और ऐसे तो इसको नहीं गवा सकते ना। सो इसके बारे में बात करेंगे, और बात करेंगे अक्षर पटेल और मिलर के बीच में जो पार्टनरशिप थी उसकी भी। सो आप कहीं मत जाइए, सुनते रहिए रेडियो ऑलिव, स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास।

0: सो 210 रन के बड़े टारगेट का पीछा करते टाइम दिल्ली की शुरुआत बहुत खराब थी कल. टीम ने पावर प्ले में ही केएल राहुल और अभिषेक पौरल को और साहिल परख तीनों के विकेट गंवा दिए थे और इसके बाद मतलब सब कुछ ऐसे ना बिखर सा गया था. अब मुश्किल परिस्थितियों में कैप्टन अक्षर पटेल ने 30 बॉल्स में 56 रन की एक बहुत ही स्पीड वाली पारी खेली और उसके बाद डेविड मिलर ने 28 बॉल में 51 रन बनाकर टीम को थोड़ा सा मुकाबले में बनाए रखा. अब दोनों ने 5वें विकेट के लिए 64 रन की साझेदारी की थी. यू आर लिस्निंग रेडियो ऑल ओवर 106.3 FM. दिस इज वी मुस्कान विद यू और शो का नाम यस लाइफ मस्त है. सो कल के मैच की बात करें जहां पर पंजाब वर्सेस दिल्ली था. अब दिल्ली की शुरुआत बहुत खराब थी लेकिन मैच दिल्ली ने ही जीता था. इसीलिए कहा जाता है कि हमेशा स्टार्टिंग में जो है किसी को जज नहीं करना चाहिए क्योंकि बाद में हो सकता है कि पारी जो है वो बदल जाए. सो कल के मैच का बेस्ट मोमेंट जो था वो आपको कौन सा लगा? 3311106 इज माय नंबर. इसी के साथ आई विल बी राइट बैक और आज आपके लिए एक बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज लेकर आई हूँ. स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास. कूल सॉन्ग
1: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर.
2: क्या बात है सर, क्या बात है.

सो टुडे इज इंटरनेशनल नर्सेज डे और ऑनेस्टली हेल्थ केयर सिस्टम का एक साइलेंट बैकबोन जिसे अगर कहते हैं ना तो वो नर्सेज ही हैं। यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल 106.3 FM, मैं हूं मुस्कान और शो का नाम लाइफ मस्त है। डॉक्टर यूजुअली ट्रीटमेंट डिसाइड करते हैं लेकिन पेशेंट के साथ सबसे ज्यादा टाइम कौन स्पेंड करता है? नर्सेज। और इमोशनली भी हॉस्पिटल का टफेस्ट पार्ट जो है वो नर्सेज हैंडल करती हैं। पैनिक, फियर, इमरजेंसीज, लोनलीनेस, सब कुछ। और एक और बात है कि मोस्ट पेशेंट्स को मेडिसिन का नाम याद नहीं रहता लेकिन उन्हें वो नर्स याद रहती है जिसने डिफिकल्ट टाइम में ना कामली सब कुछ हैंडल किया था। टाइम कोई भी हो, दुनिया ने देखा है कि हेल्थ केयर वर्कर्स कितने सेक्रीफाइसेस करते हैं, लॉन्ग शिफ्ट्स, नो स्लीप, फैमिली से डिस्टेंस, और फिर भी स्माइल के साथ काम करते हैं। हीलिंग ना सिर्फ मेडिसिन से नहीं आती, ह्यूमन केयर भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और नर्सिंग प्रोफेशन में इमोशनल स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि हर पेशेंट रिकवर नहीं करता लेकिन फिर भी एक नेक्स्ट पेशेंट के लिए होप मेंटेन करना पड़ता है। सो आई विल से कि अगर आज आपका कोई दोस्त है जो नर्सिंग में है या आज आपको लगता है कि आपने हेल्थ केयर डिपार्टमेंट में एक बहुत लंबा टाइम स्पेंड किया है, सो आई विल से कि सबसे पहले तो मैं उन सभी को थैंक यू बोलना चाहूँगी जिन्होंने इतना टाइम यू नो हेल्थ केयर का बैकबोन बन के दिखाया है। और दूसरा, इफ़ यू हैव समवन जो आपके आसपास है और नर्सिंग में है तो उन्हें फटाफट से कॉल कीजिए और आज थैंक यू जरूर बोलिएगा। यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल 106.3 FM, नंबर है 3311063। यू कैन व्हाट्सएप मी, आप मुझे ऑडियो भी भेज सकते हैं। स्टे ट्यून्ड जी।

0: Story of the day. Story of the day.
1: Save one life, you're a hero. Save hundreds of life, you're a nurse. और इसीलिए हर साल 12 मई को दुनिया सेलिब्रेट करती है इंटरनेशनल नर्सेस डे, क्योंकि आज ही के दिन जन्म हुआ था फ्लोरेंस नाइटिंगेल का, द लेडी विद द लैम्प. वो लेडी जो हर रात में लैम्प लेकर वुंडेड सोल्जर के पास जाती थी, तभी से नर्सिंग प्रोफेशन नहीं कंपैशन का दूसरा नाम बन गया. तो आज उन सब रियल लाइफ नाइटिंगेल्स को सल्यूट, जो हर रोज किसी अनजान इंसान के लिए अपनी नींद, अपना कंफर्ट सब भूल जाती हैं. हैप्पी इंटरनेशनल नर्सेस डे टू द हैंड्स दैट हील एंड द हार्ट्स दैट केयर.

0: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन हिंदी रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।
1: Your daily surprise is here. अपना हाला रिचार्ज करो और पाओ फ्री डेटा या मिनट्स का सरप्राइज. क्लेम करो ओरिडू ऐप पर. ऑफर वैलिड है 31st मई तक. एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडू.
2: सोचो अगर सेविंग से आप बन जाओ मिलियनेयर. कमर्शियल बैंक के सेव एंड विन कैंपेन में भाग लीजिए.
3: हर 10,000 कतरी रियाल सेविंग ग्रोथ पे मिलेगा एक कूपन या सिर्फ 50% सैलरी सेव करो एंड एंटर द ड्रॉ.
2: न्यू कस्टमर हो तो अकाउंट खोलो और फर्स्ट सैलरी ट्रांसफर पे गारंटीड चांस टू विन.
3: और 9 महीने की कंसिस्टेंट सैलरी ट्रांसफर के साथ मेगा ड्रॉ में एंट्री पक्की.
2: तो फिर सोचना क्या, अगले मिलियनेयर आप हो सकते हो. आज ही शुरू करो सेविंग्स. कमर्शियल बैंक, सेव एंड विन.
4: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM. Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM. And Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063. Life

पहले ना ब्लड प्रेशर को हम अंकल आंटी वाला प्रॉब्लम मानते थे, और अब 25 टू 30 एज ग्रुप में भी ब्लड प्रेशर इश्यूज बहुत कॉमन हो गया है, और डॉक्टर्स रैपिडली एक ही चीज बोल रहे हैं कि लाइफस्टाइल। सो आज का रूटीन देखना बहुत जरूरी है। यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल ऑफ 106.3 FM, दिस इज मी मुस्कान विद यू, और शो का नाम है लाइफ मस्त है। भाई स्लीप कम हो गया है, स्ट्रेस ज्यादा हो गया है, प्रोसेस्ड फूड और भी ज्यादा हो गया है, मूवमेंट थोड़ा सा कम हो गया, और कॉन्स्टेंट फोन यूसेज जो है वो तो है ही। अब आप कहोगे कि हर चीज की प्रॉब्लम फोन तो नहीं हो सकती, पर है, कुछ कर नहीं सकते, और बॉडी ना कंटिन्यूसली अलर्ट मोड में रहती है। इस वजह से ब्लड प्रेशर ग्रेजुअली इंक्रीज होने लगता है, और स्कैरी पार्ट क्या है कि हाई ब्लड प्रेशर ऑफन साइलेंट होता है, सिम्टम्स क्लियरली फील ही नहीं होते, और इसीलिए मतलब कहा जाता है कि अच्छा नहीं होता। लेकिन अच्छी बात क्या है कि लाइफस्टाइल चेंज करके जेन्युइनली आप इसे यू नो कम कर सकते हैं और हेल्प करते हैं अपनी लाइफ में, जैसे कि डेली वॉकिंग, हाइड्रेशन, लेस सॉल्ट, प्रॉपर स्लीप और ब्रीदिंग एक्सरसाइज। बस ये छोटी छोटी चीजें करके आप ब्लड प्रेशर से बच सकते हैं। सो इवन रिसर्च ये शो करती है कि स्ट्रेस मैनेजमेंट सिर्फ बीपी को इम्प्रूव कर सकता है, और कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। और ऑनेस्टली मॉडर्न लाइफस्टाइल का बिगेस्ट हेल्थ हैक क्या है? मूवमेंट। हम पूरे दिन स्क्रीन के सामने बैठते हैं और वहीं पर काम करते हैं, बॉडी मूवमेंट ऑलमोस्ट जीरो हो गया है, और इसीलिए डॉक्टर्स जो है वो बार बार कहते हैं थोड़ा थोड़ा बीच में आपको वॉक करना बहुत जरूरी है। मतलब इवन इफ यू आर यू नो वर्किंग, थोड़ा सा लंच से पहले, थोड़ा सा लंच के बाद, थोड़ा सा घूमते फिरते रहो ऑफिस में, लोगों से बात करने का भी एक तरीका हो जाएगा, और साथ ही साथ आपका जो हेल्थ है वो भी अच्छी रहेगी। सो आज से हर थोड़ी देर में एक दो घंटे के बाद ठीक लगे तो उठिए, फोन पे बात करते करते थोड़ा वॉक कर लीजिए, और सुनते रहिए रेडियो ऑलिव, स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास।

0: You're listening to Radio Olive 106.3 FM.
1: The ultimate Qatari adventure. Souq Waqif Al Khor. Fresh fish on the grill, slow cooked mandi, perfectly spiced prawns, and that special chutney. No noise, no drama. Just seafood done right. BBQ fish, crabs, prawns, crafted with patience, served with pride. Danadal Pahar, the ultimate Qatari adventure. Souq Waqif Al Khor.
2: नमस्कार, मैं हूँ गुलराज सिंह.
3: गुलराज सिंह
2: और आप सुन रहे हैं रेडियो ऑलिव 106.3.
3: जियो बिंदास.
4: ऑलिव सुनो रेडियो नेटवर्क, कतर्स नंबर वन एशियन रेडियो नेटवर्क.

0: सो आई वॉज वॉचिंग वन गेम ऑन इंस्टाग्राम जो आजकल सोशल मीडिया पे बड़ा ही ट्रेंड कर रहा है, विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग ऑल्सो, फोन स्टैकिंग. बहुत सिंपल सा रूल है कि सारे दोस्त जब डिनर पर मिलते हैं तो सब अपना अपना फ़ोन जो है वो टेबल के सेंटर में स्टैक कर देते हैं, मतलब रख देते हैं, और जो पर्सन सबसे पहले अपना फ़ोन टच करेगा बिल वही पे करेगा. यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल ओवर 106.3 FM. दिस इज़ मी मुस्कान विद यू. शो का नाम है लाइफ मस्त है. और सरप्राइजिंगली ये ट्रेंड ग्लोबली वायरल कर रहा है. क्यों? क्योंकि लोग एक्चुअली रियलाइज कर रहे हैं कि हम फिजिकली साथ होते हुए भी मेंटली ऑनलाइन होते हैं. कभी आपने नोटिस किया है कि आप डिनर टेबल पर हो, एक रील दिखा और बस आपने दूसरे रील्स देखना स्टार्ट कर दिए, दूसरा मैसेज रिप्लाई कर रहा होता है और तीसरा कुछ और कर रहा होता है अपने फ़ोन में, और रियल कॉन्वर्सेशंस जो है वो मिस हो जाती हैं. मतलब हर चीज़ के पिक्चर्स लेना, फ़ोन चलाना और बीच बीच में मैसेजेस के रिप्लाई करना, इसके बीच में आप उस मोमेंट को भूल जाते हो जो उस टाइम पर एक्चुअली आपको इन्जॉय करना चाहिए. इसीलिए यंगर जनरेशन भी अब डिजिटल डिटॉक्स की तरफ बहुत ही इंटरेस्ट दिखा रही है. पीपल वॉन्ट कनेक्शन, मतलब नॉट जस्ट कनेक्टिविटी. आई विल से कि आप भी वही कीजिए, अगली बार जब दोस्त से मिले तो फोन जो है उसको बीच में रख दीजिए और उसे टच करने की बिल्कुल भी कोशिश मत कीजिएगा. यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव, और अगर आपने ये किया है तो मुझे बताओ व्हाट्सएप पे 3311063 पर. यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव, स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास.
1: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर.
2: क्या बात है सर, क्या बात है.
3: Song.

सो भाई अगर मैं बात करूँ कांस लवर्स के लिए, कांस फिल्म फेस्टिवल जो है हमेशा बहुत एक्साइटमेंट वाला होता है और इस बार भी कांस 2026 का बस काफी स्ट्रॉन्ग है. यू आर लिस्निंग रेडियो 106.3 FM. मैं हूँ मुस्कान और शो का नाम लाइफ मस्त है. सो इंडियन सिनेमा की प्रेजेंस भी इस बार बहुत नोटिसेबल है. रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग इंडिपेंडेंट इंडियन फिल्म्स, स्टोरी टेलिंग और वुमेन लेड नैरेटिव्स, ये सब आपको वहां पर दिखेंगे. सो ग्लोबल अटेंशन गेन कर रहा है इंडिया भी. और ऑनेस्टली कांस का इम्पॉर्टेंस सिर्फ रेड कार्पेट नहीं होता है, वहाँ स्टोरी टेलिंग सेलिब्रेट होता है. देखो हमें क्या पता है ना, कांस में जो भी लोग अपने यू नो रेड कार्पेट पर चलते हैं हम पहले उनका वेट करते हैं. अब कई सारे लोगों ने इंटरनेट पे बताना स्टार्ट कर दिया है कि इस बार वो जा रहे हैं कांस फिल्म फेस्टिवल में, कई सारे इन्फ्लुएंसर्स, कई सारे लोग. और ये देख के मुझे ऐसा लगता है कि भाई मैं कब मतलब वहाँ पहुँचूंगी. इसीलिए दुनिया भर के फिल्म मेकर्स जो है वो कांस को ड्रीम प्लेटफॉर्म मानते हैं. और इंटरेस्टिंगली अब इंडियन सिनेमा भी धीरे धीरे लाउड कमर्शियल फॉर्मूला से हटकर ग्लोबल स्टाइल स्टोरी टेलिंग एक्सप्लोर कर रहा है. रियलिस्टिक नैरेटिव्स, आर्टिस्टिक विजुअल्स और इमोशनली लेयर्ड स्टोरीज. और ऑडियंस भी अब एक्सपेरिमेंटल सिनेमा को थोड़ा सा अप्रिशिएट कर रही है, पसंद कर रही है. तो आप मुझे बताओ कि भाई कांस फिल्म फेस्टिवल को देख के जो आप पिक्चर्स देखते हो उसमें सबसे ज्यादा क्या पसंद आता है आपको. 3311106 इज माई नंबर. यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव. स्टे ट्यून्ड. जियो बिंदास.

0: Radio Olive Bay. Story of the day. Story of the day. Save one life, you're a hero. Save hundreds of life, you're a nurse. और इसीलिए हर साल 12 मई को दुनिया सेलिब्रेट करती है इंटरनेशनल नर्सेस डे, क्योंकि आज ही के दिन जन्म हुआ था फ्लोरेंस नाइटिंगेल का, द लेडी विद द लैम्प. वो लेडी जो हर रात में लैम्प लेकर वाउंडेड सोल्जर के पास जाती थी, तभी से नर्सिंग प्रोफेशन नहीं कंपैशन का दूसरा नाम बन गया. तो आज उन सब रियल लाइफ नाइटिंगेल्स को सल्यूट, जो हर रोज किसी अनजान इंसान के लिए अपनी नींद, अपना कंफर्ट सब भूल जाती हैं. हैप्पी इंटरनेशनल नर्सेस डे टू द हैंड्स दैट हील एंड द हार्ट्स दैट केयर. स्टोरी ऑफ द डे.
1: You are listening to Radio Olive 106.3 FM. गाय के साथ सीएनजी हो या फ्यूल टाइप बसेस, 64 सीटर या कॉम्पैक्ट 26 सीटर, पाइए बेहतर माइलेज और मैक्सिमम कंफर्ट. कारमेल ग्रुप के साथ अब सफर विदाउट सफर. विजिट कारमेल ग्रुप नाउ. Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.

सो बेसिकली हर दिन मैं हमेशा दिन के लास्ट थॉट की बात करती हूँ. सो दिस इज द टाइम व्हेन आई हैव टू से कि अब मुझे जाना होगा. लेकिन जाते जाते आज का लास्ट थॉट. यस, यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल ओवर 106.3 एफएम. दिस इज मी मुस्कान विद यू. शो का नाम है लाइफ मस्ट है. सो दुनिया में हम यूजुअली कॉन्स्टेंटली अवेलेबल रहते हैं, कॉल्स पे, मैसेजेस पे, नोटिफिकेशन, अपडेट्स, और इसी नॉइस में साइलेंस जो है वो लग्जरी बन गया है. कभी कभी ना रियल पीस सिर्फ इतना सा होता है कि फ़ोन को साइलेंट पे रख दो, रूम में बहुत शांति हो और माइंड थोड़ा सा स्लो हो जाए. मे बी हैप्पीनेस ऑलवेज एक्साइटमेंट से नहीं आती, कभी कभी पीस से भी आती है. और इसी सॉफ्ट थॉट के साथ कल फिर मिलेंगे. तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और थोड़ा सा इंटरनेट से भी ब्रेक लेकर देखिए. सो आई नो कि मतलब आज के टाइम पे ये कहना बहुत डिफिकल्ट है कि इंटरनेट से ब्रेक लेकर देखिए, बिकॉज एवरीथिंग इज़ ऑन इंटरनेट. चाहे आपको अपडेटेड रहना हो, चाहे आपको किसी से कनेक्ट रहना हो, किसी से मैसेज करके बात करनी हो, एवरीथिंग इज ऑन फोन. पर फिर भी ट्राई करके देखिए. यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव. मैं हूँ मुस्कान. बाय, टेक केयर एंड स्टे ट्यून्ड. जियो, बिंदास.

0: रेडियो ऑन योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी
1: योर डेली सरप्राइज इज हियर। अपना हाला रिचार्ज करो और पाओ फ्री डेटा या मिनट्स का सरप्राइज। क्लेम करो ओरिडू ऐप पर। ऑफर वैलिड है 31 May तक। एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडू।
2: दिस इज मायरा दस्तूर ऑन रेडियो ऑलिव 106.3 FM जियो बिंदास।

0: radio station, Radio Olive 106.3 FM.
1: गाय के साथ सीएनजी हो या फ्यूल टाइप बसेस 64 सीटर या कॉम्पैक्ट 26 सीटर पाइए बेहतर माइलेज और मैक्सिमम कंफर्ट कारमेल ग्रुप के साथ अब सफर विदाउट सफर विजिट कारमेल ग्रुप नाउ

0: ऑलिव रिचार्ज हर दोपहर 2 से 6 रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास
1: इन एसोसिएशन विद होम्स आर अस वी कंप्लीट योर होम।

0: ऑलिव रिचार्ज हर दोपहर 2 से 6 रेडियो ऑलिव 106.3 FM पर जियो बिंदास
1: इन एसोसिएशन विद
2: होम्स आर अस वी कंप्लीट योर होम मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पांसिबल ज्वेलर मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स्ड होती है और आती है मलाबार प्रॉमिस के साथ जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा
3: कमर्शियल बैंक वी आर सेविंग मोर टर्न्स ड्रीम्स इनटू रियलिटी कमर्शियल बैंक्स 5 million riyals dream बिगर

0: Tanisha.
1: अग्नि वैन से आहट है, व्हाट अ ब्यूटीफुल ट्रैक यार. स्प्लिट्सविला से कोई एक अच्छी चीज निकल के आई है ना, तो वो ये गाना है, वो ये बैंड है ना. तनिषा के साथ यहाँ रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर ऑलिव रिचार्ज चल रहा है. यहाँ पर अ वेरी गुड आफ्टरनून मेरी जान, क्या हाल चाल है. ट्यूजडे मे 12th कैसा ट्रीट कर रहे हैं, सब बढ़िया है कि नहीं. मेरी आवाज़ से आपको पता चल गया होगा कि मैं आ चुकी हूँ कोल्ड की पकड़ में. जी, पिछले 3 दिन से बुरा हाल कर रखा था इसने मेरा, आज बेहतर हूँ. तो मैंने कहा आज तो मेरी जान से बात करने से मुझे कोई रोक थोड़ी सकता है. हाँ जी, यही हो रहा था 2-3 दिन से मेरे साथ. जावेद बशीर साहब के बहुत सुंदर गाना.
2: जल्दी है तुम कहाँ पे, देखो यहाँ के रास्तों में.
1: ब्यूटीफुल, क्या सुंदर लिरिक्स हैं और क्या बढ़िया शो था यार ये.
2: तुम्हें जो मैंने देखा,
1: ओए होए,
2: तुम्हें जो मैंने जाना.
1: All these amazing tracks are lined up for you in this hour. और ढेर सारे surprises भी हैं, तो कहीं जाने का नहीं, बनी रहिए मेरे साथ. और फटाफट से बताइए अपने हाल चाल 3311063 पर मैसेज कीजिए मुझे, या फिर कॉल कर दीजिए 4444106 पर. स्टे ट्यून्ड, एंड जियो विंदास.

0: ऑलिव रिचार्ज आरजे तनीशा के साथ रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास
1: इन एसोसिएशन विद
2: होम्स आर अस वी कंप्लीट योर होम मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पॉन्सिबल ज्वेलर मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स्ड होती है और आती है मलाबार प्रॉमिस के साथ जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा
3: कमर्शियल बैंक वी आर सेविंग मोर टर्न्स ड्रीम्स इनटू रियलिटी कमर्शियल बैंक्स 5 मिलियन रियाल्स ड्रीम बिगर

0: अरिजीत सिंह की आवाज में जरा सी दोस्ती फ्रॉम द मूवी हैप्पी भाग जाएगी ओनली ऑन रेडियो 106.3 FM. तनीषा आपके साथ ओलिव रिचार्ज चल रहे हैं यहाँ पर. एंड अभी दो तीन दिन से कोल्ड था, सो यू नो डेज वर गोइंग वेरी स्लो फॉर मी. मतलब मैं एकदम आराम आराम से काम कर रही थी और सिक लीव भी थी, तो जल्दी उठने का कोई स्ट्रेस नहीं था. बट फिर भी 6 बजे डॉट आंखें खुल जाती थी मेरी, इतना गुस्सा चढ़ता था ना मुझे कि भाई छुट्टी आज क्या कर रही है तनीषा. पर वो एक आदत हो चुकी है ना, तो खुद से ही नींद खुल जाती है. लेकिन बहुत अच्छा लगा, धीरे धीरे आराम आराम से काम किया सारा, यू नो फुल रेस्ट वगैरह किया. एंड दैट मेड मी रियलाइज कि नॉट बिकॉज ऑफ गेटिंग सिक, बट बिना किसी रीजन के भी हमें कुछ ऐसे स्लो डेज हमारी जिंदगी में लेने चाहिए महीने में, क्योंकि बहुत ज़रूरी है. रोज़ की जो हसल में हम लगे हुए हैं ना, भागते रहते हैं इधर से उधर, पता नहीं है मंजिल क्या है पर भाग रहे हैं. सो उसको थोड़ा सा स्लो करके खुद के लिए वक्त निकालो, खुद के साथ बैठो, रेस्ट करो थोड़ा. डोंट डू एनीथिंग, यप, इन्जॉय द फीलिंग ऑफ डूइंग एब्सोल्युटली नथिंग. वो बेस्ट होता है. और फिर आप जब दोबारा से अपने रूटीन में आते हो ना, आप और एनर्जाइज्ड और रिफ्रेश्ड फील करते हो. सो ट्राई डूइंग दैट अगर बहुत वक्त से अपने लिए वक्त नहीं निकाला है तो. बढ़िया लगेगा, ट्रस्ट मी ऑन दैट. स्टे ट्यून्ड, एंड्रियो बिंदास रेडियो ऑलिव पर. आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर.
1: क्या बात है सर, क्या बात है.

श्रेया घोषाल और अभिजीत की आवाज में मैं हूं नासे ब्यूटीफुल ड्रैग ओनली ऑन रेडियो 106.3 FM दनीशा आपके साथ ऑल एवरी चार्ट चल रहा है यहाँ पर और भाई जोर शोर से ऐसे गर्मी आ चुकी है तो एक चीज का ख्याल रखना है स्टे हाइड्रेटेड यस हैव फ्रूट्स यू नो जिसमें वाटर कंटेंट ज़्यादा हो और बढ़िया अपने साथ पानी वानी कैरी करके चलना है हमेशा और अगर धूप वूप में निकल रहे हैं तो बहुत सारा सनस्क्रीन नजर लगा के निकलो अपना ख्याल रखो मेरी जान आप बहुत इंपॉर्टेंट हो आपको कोई परेशानी हो ना मुझे गुस्सा आ जाता है कि नहीं यार कैसे ऐसे सो प्लीज मेरे लिए अपना ख्याल रखिए और आपको एकदम मस्त और रिलैक्स और स्ट्रेस फ्री रखने के लिए यहाँ बढ़िया गाने तो मैं चला ही रही हूँ रंगरेज भेज रही हूँ कृष्णा की आवाज में तनु वज मनु से बहुत खूबसूरत गाना सुन रही है रेडियो ऑल ऑफ जियो बिंदास

0: Olive Bay. Story of the day. Story of the day. Save one life, you're a hero. Save hundreds of life, you're a nurse. और इसीलिए हर साल 12 मई को दुनिया सेलिब्रेट करती है इंटरनेशनल नर्सेस डे, क्योंकि आज ही के दिन जन्म हुआ था फ्लोरेंस नाइटिंगेल का, द लेडी विद द लैम्प. वो लेडी जो हर रात में लैम्प लेकर वाउंडेड सोल्जर के पास जाती थी, तभी से नर्सिंग प्रोफेशन नहीं कंपैशन का दूसरा नाम बन गया. तो आज उन सब रियल लाइफ नाइटिंगेल्स को सल्यूट, जो हर रोज किसी अनजान इंसान के लिए अपनी नींद, अपना कंफर्ट सब भूल जाती हैं. हैप्पी इंटरनेशनल नर्सेस डे टू द हैंड्स दैट हील एंड द हार्ट्स दैट केयर. स्टोरी ऑफ द डे.
1: You are listening to Radio Olive 106.3 FM.
2: Your daily surprise is here. अपना हाला रिचार्ज करो और पाओ फ्री डेटा या मिनट्स का सरप्राइज. क्लेम करो ओरिडू ऐप पर. ऑफर वैलिड है 31st मई तक. एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडू.
3: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.
4: Olive Recharge. Radio Olive 106.3 FM par. Jio Bindas.
5: Olive Recharge.
6: In association with
7: Homes Are Us, we complete your home.
8: Malabar Gold and Diamonds, the responsible jeweler. Malabar Gold and Diamonds ki har jewelry piece ethically sourced hoti hai aur aati hai Malabar Promise ke saath, jahan milti hai complete transparency aur bharosa.
9: Commercial Bank, we are saving more, turns dreams into reality. Commercial Bank's 5 million riyals dream, dream bigger.

0: Tanisha.
1: You're listening to Radio Olive 106.3 FM. Amazing tracks जो चल रहे हैं वो आप मेरे साथ चल रहे हैं, तनिषा के साथ Olive Recharge चल रहे हैं यहाँ पर. और अभी मेट का ड्रामा खत्म हुआ नहीं था कि कांस शुरू हो चुका है. जी हाँ, कांस फिल्म फेस्टिवल आने वाला है और पहुंच चुके हैं जो स्टार्स हैं फ्रांस में. और लुक्स पे लुक्स दिए जा रहे हैं. जी दीपिका पहुंच चुकी है, अलेज इज देयर, फुल अंबानी, कैन इज देयर एंड अ लॉट ऑफ सेलिब्रिटीज यू विल गेट टू सी. और बढ़िया बढ़िया लुक्स देखने को मिलेंगे. मुझे इतना मजा आता है ना, इतना आयरॉनिक फील होता है. एवरीबडी डज दैट, वेरो मस्त पजामे वजामे में बैठ के इनके करोड़ों के लुक्स हम जज कर रहे थे कि यार ये मजा नहीं आया, कलर नहीं मैच कर रहा, अरे इसका पैटर्न सही नहीं लग रहा. एंड सच एन अमेजिंग फीलिंग दैट इज नहीं. We all do that. It's fun. Social media पे रौनक ही लगी रहती है. You know, तरह तरह के डिजाइन आपको देखने को मिलते हैं. एंड आजकल तो influencers को भी जाने मिला है. So a lot of influencers are also going from India. Rida Thirana is there, Sakshi Sindhwani is there. I don't know about Nancy Tyagi. Last year गई थी वो, अपने जो amazing designs वो खुद बनाती हैं उसके बेसिस पर. इस बार जा रही है या नहीं अभी तक कुछ पता नहीं है, लेट्स सी. बट या सही रहेगा, सोशल मीडिया पे रौनक आने वाली है. स्टे ट्यून्ड एंड जी बिंदास.
0: रेडियो

0: You are listening to Radio Olive 106.3 FM. Commercial Bank presents CB 2026 Million Reals Dream.
1: अब सिर्फ सेविंग्स नहीं, सपने ग्रो होंगे. जीतिए पूरे 5 मिलियन रियाल्स कैश प्राइजेस.
0: जीतने के चार रास्ते. पहला, अपना अकाउंट बैलेंस बढ़ाइए. हर 10,000 रियाल्स ग्रोथ पर पाइए एक कूपन.
1: दूसरा, अगर सैलरी 4,000 प्लस है या 50% सेव किया है तो आप एलिजिबल है.
0: तीसरा, नए कस्टमर्स को पहली सैलरी या 10,000 फंडिंग पर गारंटीड कूपन. और चौथा, 9 महीने रेगुलर सैलरी पर पाइए एक एक्स्ट्रा कूपन और मेगा ड्रॉ टिकट.

0: ऑलिव रिचार्ज हर दोपहर 2 से 6 रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास
1: इन एसोसिएशन विद
2: होम्स आर अस वी कंप्लीट योर होम मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पांसिबल ज्वेलर मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स्ड होती है और आती है मलाबार प्रॉमिस के साथ जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा
3: कमर्शियल बैंक वी आर सेविंग मोर टर्न ड्रीम्स इनटू रियलिटी कमर्शियल बैंक्स 5 मिलियन रियाल्स ड्रीम बिगर

0: ऑलिव रिचार्ज रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास ऑलिव रिचार्ज
1: इन एसोसिएशन विद होम्स आर अस वी कंप्लीट योर होम मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पांसिबल ज्वेलर मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स्ड होती है और आती है मलाबार प्रॉमिस के साथ जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा
2: कमर्शियल बैंक वी आर सेविंग मोर टर्न्स ड्रीम्स इनटू रियलिटी कमर्शियल बैंक्स 5 मिलियन रियाल्स ड्रीम बिगर

0: तनीषा के साथ आप रेडियो 106.3 FM पर ऑल एवरी चार्ट चल रहा है यहाँ पर. और जो फीफा वर्ल्ड कप होने वाला है उसके ब्रॉडकास्टिंग राइट्स के लिए OTT में जितने भी इंडियन OTT प्लेटफॉर्म्स है उसमें ऐसे जद्दोजहद होनी चाहिए थी, राइट? सबकी ऐसी लड़ाइयाँ होनी चाहिए थी, क्रेजी बिडिंग वॉर्स होनी चाहिए थी, पर कुछ नहीं हुआ. एंड DD दूरदर्शन जीत चुका है. ये दूरदर्शन विल बी ब्रॉडकास्टिंग फीफा वर्ल्ड कप दिस टाइम एब्सोल्युटली फ्री फॉर एवरीवन आउट देयर. आपको कोई सब्सक्रिप्शन देने की ज़रूरत नहीं है, कुछ नहीं, मस्त टीवी लगाओ, एंटेना सेट करो अगर अभी भी एग्जिस्ट करता है तो, और बिंदास देखो जितने भी फैंस हैं. एंड सही है यार, फिर से एक बार दूरदर्शन जो है वो लाइम लाइट में आ जाएगा, उसको जो इम्पोर्टेंस मिलनी चाहिए थी वो एक बार फिर से सालों के बाद उसे मिलने वाली है. सो आई एम रियली हैप्पी विद दिस, क्योंकि मेरे घर पे ना हमेशा से केबल लगा होता था, सो वी नेवर वॉच्ड दूरदर्शन. बट माय फ्रेंड, उसके घर पे नहीं था, उसके डैड वाज वेरी स्ट्रिक्ट कि नहीं केबल लगाया तो इतने ऑप्शंस होंगे, बच्चे बिगड़ जाएंगे, पढ़ाई पे ध्यान नहीं देंगे एंड ऑल. तो उसके घर पे सिर्फ दूरदर्शन था एंड आई वुड गो टू हर प्लेस टू वॉच शोज ऑन दूरदर्शन, स्पेशली शक्तिमान एंड ऑल, यू नो, संडे मॉर्निंग्स आई यूज टू गो टू हर प्लेस टू वॉच दैट. तो आई हैव सम रियली कूल मेमोरीज विद दैट एंड दैट्स व्हाई आई एम हैप्पी. या डू यू हैव एनी सच मेमोरीज विद दूरदर्शन? डू शेयर इट विद मी 3311-1063 पर एंड स्टे ट्यून्ड. जियो बिंदास.
1: अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है.

0: तनिषा के साथ आप रेडियो 106.3 एफएम पर ऑलिव यू चैट चल रहा है अब
1: ये है चलती फिरती डिक्शनरी।
0: सो आज जो मैं डिक्शनरी से वर्ड लेकर आई हूँ वो एक जर्मन वर्ड है एंड वी ऑल हैव फेल्ट दिस यू नो कभी ना कभी तो लाइफ में हो सकता है कुछ लोग अभी महसूस कर रहे हो। सो द वर्ड इज सेंसुक्त, द स्पेलिंग इज एस ई एच एन एस यू सी एच टी, इट्स कॉल्ड सेंसुक्त। और इसका बेसिकली मीनिंग ये है कि कभी कभी कुछ फीलिंग्स होती है ना जो हम वर्ड्स में डिस्क्राइब नहीं कर सकते, दैट इज सेंसुक्त फॉर यू। मिसिंग समथिंग विच wasn't really there और मे बी बदल चुका है या फिर यू wanted कि यार ऐसा हो जाता, इट्स काइंड ऑफ द फीलिंग विच यू मिस विच कुड हैव बीन माइट हैव बीन वुड हैव बीन पर कभी एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं किया, यू नो मिसिंग समथिंग विच नेवर रियली बिलोंग टू यू। इट कुड बी अ पर्सन, इट कुड बी अ प्लेस, इट कुड बी अ जॉब, इट कुड बी अ वर्जन ऑफ यू और इट कुड बी योर लाइफ। यू नो आपने इमेजिन किया होगा कि ऐसी होगी वैसी होगी, इट नेवर टर्न्ड आउट लाइक दैट। और आप एक दिन बैठकर सोच रहे हो कि यार मैं ऐसा सोचता था, यार काश ऐसा हो जाता, बढ़िया रहता, यू नो लाइफ ऐसी होती। यू आर जस्ट यू आर चेकिंग आउट द प्रोज एंड कॉन्स एंड यू आर जस्ट मिसिंग दैट वर्जन ऑफ योर लाइफ और योर सेल्फ, दैट इज सेंसुक्त फॉर यू। स्टे ट्यून्ड एंड ड्रीम बिंदास।

You're listening to Radio Olive 106.3 FM. Tanisha, आपके साथ Olive Recharge चल रहा है यहाँ पर. एंड मुझे बताइए कितने लोग अनॉय होते हैं जब किसी वेबसाइट पे गए और पॉपअप्स आ गए और आप उसको बंद करने की कोशिश कर रहे हैं तो वो जो क्रॉस है, वो जो क्लोज वाला साइन है, वो स्क्रीन पे मूव कर रहा है, आपका पागल बना रहा है. दिमाग की दही हो जाती है यार मेरे तो. बट चाइना ने इसका हल निकाल लिया है एंड इट इज एब्सोल्युटली अमेजिंग. आई विश कि सारी कंट्रीज में ऐसा हो जाए. सो चाइना हैज़ अ रूल फॉर इंटरनेट पॉपअप एड्स और वो ये है कि सबका जो क्लोज बटन है ना वो बहुत क्लियर होना चाहिए. कई बार ऐसा होता है कि हमें क्लोज बटन ढूंढना पड़ता है. उन्होंने ऐसे ट्रिकी जगहों पर रखा होता है कि वो सामने स्क्रीन पर देखने पर भी हमें नजर नहीं आ रहा होता है. सो इट शुड बी फर्स्ट विजिबल एंड लोग उसे एक बार क्लिक करके बंद कर सके. कई बार ये भी होता है कि आप उसे क्लोज करने जाते हो, एक और पॉपअप खुल जाता है. उसे क्लोज करने जाते हो, एक और पॉपअप खुल जाता है. एंड गुस्से में मैं तो वो वेबसाइट ही छोड़ देती हूँ. सो या इट शुड बी क्लोज्ड इन वन क्लिक. एंड ऑल्सो देयर इज बैन ऑन ट्रिक्स लाइक हिडन क्लोज साइंस, फेक क्लोज बटन्स, ये भी होता है. काउंट डाउन वेट कि यू नो आप 10 सेकंड तक देखोगे उसके बाद ही आप स्किप कर सकते हो. ये तो हमारे साथ यूट्यूब भी खेलता है यार. और मेकिंग यूजर्स क्लिक टू और मोर टाइम्स टू लीव द एड, एज आई सेड कि एक क्लोज किया तो दूसरा खुल जाएगा. एंड दैट इज सच अ गुड रूल बिकॉज इट अनॉयज द हेल आउट ऑफ मी एंड आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल वुड रिलेट विद दैट. और काफी वक्त जाया होता है यार, इंटरेस्ट भी खो जाता है मेरा तो आई थिंक ये वाला रूल तो हर कंट्री में लागू हो जाना चाहिए पॉपअप एड्स के लिए. क्या बोलते हो? सही बोल रहे हो, एग्जैक्टली. स्टे ट्यून्ड एंड जियो बिंदास.

0: ऑलिव रिचार्ज हर दोपहर 2 से 6 रेडियो ऑलिव 106.3 FM पर जियो बिंदास
1: इन एसोसिएशन विद
2: होम्स आर अस वी कंप्लीट योर होम मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पांसिबल ज्वेलर मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स्ड होती है और आती है मलाबार प्रॉमिस के साथ जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा
3: कमर्शियल बैंक वी आर सेविंग मोर टर्न्स ड्रीम्स इनटू रियलिटी कमर्शियल बैंक्स 5 मिलियन रियाल्स ड्रीम बिगर

0: Danisha.
1: You are listening to Radio Olive 106.3 FM. Danisha aapke saath. Olive Vita chal raha hai ab.
2: TikTok.
1: उड़ती उड़ती खबर आई है कि इंस्टाग्राम फिर से डिसलाइक वाला जो बटन है वो ट्राई कर रहा है, ऐसे टेस्ट कर रहा है कुछ कुछ लोगों के साथ डिसलाइक बटन कमेंट्स पे, नॉट इन द पोस्ट, और वो डाउनवर्ड एरो की तरह होगा. एंड दे आर ट्राइंग टू फिगर इट आउट वेदर इट विल बी गुड और नॉट. अभी टेस्टिंग फेज में है एंड आई थिंक आ जाना चाहिए. बट फर्क खास कुछ पड़ेगा नहीं क्योंकि लोग रिप्लाई करके बता देते हैं कि उन्हें डिसलाइक हो रहा है आपका कमेंट. सो यू गेट टू नो इट आइदर वे. बट ठीक है, इट विल बी इजियर. जो नहीं लिखना चाहते, इतना टाइप नहीं करना चाहते, उनके लिए चीज़ें आसान हो जाएगी. बस एक बटन आपने क्लिक कर देना है. आप बताओ मुझे एक ऐसा कौन सा फीचर है यू वॉन्ट इंस्टाग्राम टू ब्रिंग आउट कि भाई हद हो गई है, फालतू के फीचर्स लेकर आ रहे हो, ये वाला लेकर आओ, ये काम का है. बताओ मुझे 3311 1063 पर और सुनते रहो रेडियो ऑलिव. जियो बिंदास.

0: ऑलिव रिचार्ज आरजे तनीशा के साथ रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास
1: इन एसोसिएशन विद होम्स आर अस वी कंप्लीट योर होम मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पांसिबल ज्वेलर मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स्ड होती है और आती है मलाबार प्रॉमिस के साथ जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा
2: कमर्शियल बैंक वी आर सेविंग मोर टर्न्स ड्रीम्स इनटू रियलिटी कमर्शियल बैंक्स 5 मिलियन रियाल्स ड्रीम बिगर

0: दिशा
1: परेशान परेशान तो अब हो जाएंगे आप जब मैं पूछूंगी लेम जेम्स का सवाल. या लिसन टू रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम. तनिषा आपके साथ ऑलिव रिचार्ज चल रहा है अब.
2: लेम जेम्स
1: और मेरा लेम जेम्स का आज का सवाल है कि अगर दूध में हल्दी ना डाली हो तो वो क्या हो जाएगा. अगर दूध में हल्दी ना डाली हो तो वो क्या हो जाएगा. 3311063 पर मैसेज करके मुझे बताइए या फिर कॉल कर दीजिए 4444106063 पर. दूध में हल्दी ना डाली हो तो वो क्या हो जाएगा. टेस्टी मत बोलना ठीक है. उसके लिए उसमें कोई चॉकलेट पदार्थ होना चाहिए मेरे लिए तो तभी जाके वो टेस्टी हो पाएगा. बट फिलहाल पॉइंट ये है कि दूध में हल्दी ना जाए ना डाले तो वो क्या हो जाएगा. 3311063 स्टे ट्यून्ड एंड जियो बिंदास.
3: Cool song. Radio Olive पर आने वाला गाना Cool Song of the

0: Tanisha.
1: और हम मिड वीक में है तो ये एनर्जी की जरूरत है. वी वीकेंड कब अप्रोच कर रहे हैं जी. मैं संडे से शुरू कर देती हूँ ये वाला काम. ऐसे नहीं कि मैं वेट करूंगी थर्सडे आएगा तब वीकेंड की बात करेंगे. संडे से अपना गोल ये रहता है कि वीकेंड पर पहुंचना है. एंड वी आर ऑलमोस्ट देयर यू नो. यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑलिव. त्रिशा के साथ आप ऑलिव रिचार्ज चल रहे हैं. अब देयर आर लेम जैम्स का सवाल मैंने पूछा था कि अगर दूध में हल्दी ना डाली जाए तो वो क्या हो जाएगा. और यहाँ मुझे बहुत सारे मैसेजेस आए हैं एंड लोगों ने मुझे ये भी याद दिलाया कि ये तो आप पूछ चुकी हो. जी हाँ, आई वाज जस्ट टेस्टिंग कि आपको याद है या नहीं. सो अली, मोहम्मद, शिफाद एंड शिखा, अनन्या एंड बहुत सारे नए नए लोगों के मैसेजेस आज मुझे आए हैं एंड सब ने मुझे सही जवाब दिया है. द करेक्ट आंसर इज अनहेल्दी. मुझे इतना गंदा रिएक्शन मिलता है ना अपने कॉलीग से जब भी मैं उनसे ये सवाल पूछती हूँ. एंड आई एम इमेजिनिंग योर फेस इज लाइक दैट एज वेल. प्लीज मुझे बताइएगा आपका क्या रिएक्शन रहता है मेरे ये सवाल और जवाब सुन के. जानना चाहूंगी, थोड़ी क्यूरियस हूँ. बट पहले शुक्रिया कि आपने साथ दिया मेरी लेमनेस में. इसी बात पे एक बढ़िया गाना आपके लिए, हम सबकी फीलिंग्स को एकदम बढ़िया तरीके से बयां करता हुआ चार शनिवार. स्टे ट्यून्ड एंड जियो बिंदास.

the day. Story of the day. Save one life, you're a hero. Save hundreds of life, you're a nurse. और इसीलिए हर साल 12 मई को दुनिया सेलिब्रेट करती है इंटरनेशनल नर्सेस डे, क्योंकि आज ही के दिन जन्म हुआ था फ्लोरेंस नाइटिंगेल का, द लेडी विद द लैम्प. वो लेडी जो हर रात में लैम्प लेकर वाउंडेड सोल्जर के पास जाती थी, तभी से नर्सिंग प्रोफेशन नहीं कंपैशन का दूसरा नाम बन गया. तो आज उन सब रियल लाइफ नाइटिंगेल्स को सल्यूट जो हर रोज किसी अनजान इंसान के लिए अपनी नींद, अपना कंफर्ट सब भूल जाती हैं. हैप्पी इंटरनेशनल नर्सेस डे टू द हैंड्स दैट हील एंड द हार्ट्स दैट

Tanisha. तनीषा के साथ आप रेडियो 106.3 FM पर अरिजीत सिंह की आवाज में लूडो मूवी से हर दम हम दम ब्यूटीफुल ट्रैक। बढ़िया मूवी है, नहीं देखी है तो जरूर देखिएगा। अभी वक्त हो गया मेरे जाने का, मेरी जान, लौट कर आऊंगी कल दोपहर 2 बजे। और कल है वेंसडे, नॉट वीकेंड, मैं वीकेंड बोलने वाली थी, कल है वेंसडे, वीकेंड के नजदीक हो रहे हैं हम, सो दैट्स वाई खुशी। बट नो वरीज, वाइब्स फिर भी यहाँ पे ऑन रहेंगी, फुल ऑन। तो आपने अपना रखना है ढेर सारा ख्याल, तब तक ज्यादा मिस नहीं करना मुझे, मिस करोगे तो सोशल मीडिया पे आ जाना, ठीक है? radioalive.qa इज द हैंडल, वहां पे मैसेज कर दो, बिंदास, आई एम देयर फॉर यू। यहाँ पे हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हो आप 3311106 पर, और चेकआउट करो द वीडियोज एंड पोस्ट वी की पोस्टिंग ऑन आर सोशल, उससे इंटरेक्ट करो, हमें पता चलना चाहिए कि चीजें आप तक पहुंच रही है यार। और पानी पीते रहना, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, स्टे हाइड्रेटेड, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, और कोल्ड से बच जाना, ठीक है? ऐसे धूप से निकल कर एसी के नीचे ना खड़े हो जाना, ठंडा ठंडा पानी ना पी लेना, कर चुकी हूँ मैं और भुगत रही हूँ मैं, एंड आई डोंट वॉन्ट यू टू गो थ्रू दैट, ओके मेरी जान जी? सो टेक केयर एंड सुनते रहिए रेडियो 106.3 FM।

तभी तो पूरे शहर की इवनिंग होती है। ओहो।

तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त कतर की नंबर वन आरजे आरजे सिमरन के साथ जबरदस्त इवनिंग रोज शाम 5 से 9 ओनली ऑन 106.3 रेडियो ओलिव जियो

सूरज डूब गया कि नहीं डूब गया मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं स्टूडियो के अंदर हूँ दोस्त। अरिजीत सिंह की आवाज शो की शुरुआत ताबड़तोड़ गाने से। जी मैं जी सोने के दादी की हलचल सत श्री अकाल सिमरन कौर आपके साथ। जबरदस्त इवनिंग शुरू हो चुका है और बताइए कैसा रहा आपका आज का दिन, क्या किया आपने, कैसा रहा आपका मूड और 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे आज के दिन को बता सकते हैं आप आपके गुड इवनिंग वाले मैसेजेस के साथ 3311063 पे भेज दो। पारों के जलवे हैं यार।

जीला हिला देंगे चार घंटे अपने, ये पूरी अटेंशन मुझे चाहिए। कहीं पे भी जो है वो आपका ध्यान मुड़ना नहीं चाहिए, रेडियो ऑन रहना चाहिए, काम चाहे आप जो भी मर्जी करते रहें। यही हमारी रेडियो ऑलिव की एप्लीकेशन का फायदा है कि आप दुनिया के किसी भी कोने में बैठ के सुन सकते हो। आजकल सबके पास हेडफोन्स हैं, एयरपॉड्स हैं, लगाइए और रेडियो को सुनते रहिए। अभी लगाने की बात से याद आया, लिपस्टिक लगा लीजिए। अदनान सामी का नया गाना आ गया लिपस्टिक लगा के।

0: सेविंग से आप बन जाओ मिलियनेयर। कमर्शियल बैंक के सेव एंड विन कैंपेन में भाग लीजिए।
1: हर 10,000 कतरी रियाल सेविंग ग्रोथ पे मिलेगा एक कूपन, या सिर्फ 50% सैलरी सेव करो एंड एंटर द ड्रॉ।
0: न्यू कस्टमर हो तो अकाउंट खोलो और फर्स्ट सैलरी ट्रांसफर पे गारंटीड चांस टू विन,
1: और 9 महीने की कंसिस्टेंट सैलरी ट्रांसफर के साथ मेगा ड्रॉ में एंट्री पक्की।
0: तो फिर सोचना क्या, अगले मिलियनेयर आप हो सकते हो। आज ही शुरू करो सेविंग्स। कमर्शियल बैंक, सेव एंड विन।
2: सुन रहे हैं रेडियो
3: ऑलिव 106.3। ऑलिव सुनो रेडियो नेटवर्क, कतर्स नंबर 1 एशियन रेडियो नेटवर्क। रेडियो ऑलिव
4: नंबर 1। इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के। लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के। तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त। गदर की नंबर 1 आरजे सिमरन के
5: साथ। जबरदस्त इवनिंग मेक यू ड्राइव गोल्डन विद।
6: बिगेस्ट ज्वेलरी फेस्टिवल इज नाउ हैपनिंग एट जोयालिकास। जोयालिकास ब्रिंग्स यू अ गोल्डन चांस टू सेव 40% ऑफ ऑन मेकिंग चार्जेस फॉर गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी।
7: सपोर्टेड बाय होम्स आर अस, वी कंप्लीट योर होम।

ਜੀ आप अपना काम करते रहिए, आपके लिए हम आपको स्कोर जो है वो बताएंगे। गुजरात और हैदराबाद का मैच चल रहा है, गुजरात जो है वो अभी खेल रहा है क्योंकि हैदराबाद ने टॉस विन किया था तो उन्होंने फील्डिंग करने का फैसला किया एंड गुजरात अभी खेल रहा है। 4.2 ओवर कंप्लीट होने के बाद, यानी कि 4.3 हो गया अभी ओवर कंप्लीट होने के बाद, स्कोर हो गया 26 और एक विकेट का नुकसान जो है वो ऑलरेडी हो चुका है। सो या मैच का ये हाल है, आपके दिल का जो हाल है वो बता दीजिए।

0: Radio Olive, your happiness frequency. गाय के साथ सीएनजी हो या फ्यूल टाइप बसेस 64 सीटर या कॉम्पैक्ट 26 सीटर पाइए बेहतर माइलेज और मैक्सिमम कंफर्ट कारमेल ग्रुप के साथ अब सफर विदाउट सफर विजिट कारमेल ग्रुप नाउ।
1: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के, लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के, भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त कतर की नंबर वन आरजे
2: आरजे सिमरन के साथ।
3: जबरदस्त इवनिंग मेक यू ड्राइव गोल्डन विद
4: बिगेस्ट ज्वेलरी फेस्टिवल इज नाउ हैपनिंग एट जोयालिकास। जोयालिकास ब्रिंग्स यू अ गोल्डन चांस टू सेव 40% ऑफ ऑन मेकिंग चार्जेस फॉर गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी सपोर्टेड बाय होम्स आर अस। वी कंप्लीट योर होम।

ਗਾਣੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਸਿਮਰਨ ਕੌਰ ਹੈ ਆਪਕੇ ਸਾਥ। ਤੋ ਕਿਆ ਕਹਿਤਾ ਹੈ ਦੋਸਤ, ਬਾਹਰ ਕਾ ਮੌਸਮ, ਚਲੀਏ ਚੈੱਕ ਕਰਤੇ ਹੈ। ਕੱਲ ਸ਼ਾਮ ਕੋ ਜੋ ਥਾ ਵੋ ਬਾਹਰ ਕਾ ਮੌਸਮ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੜੀਆ ਥਾ, ਅੱਛੀ ਹਵਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਥੀ ਯਾਰ। So, 35 degrees Celsius, अभी तक का टेम्परेचर, एंड फील्स लाइक 35। सॉरी 34 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर, एंड फील्स लाइक 35 डिग्री सेल्सियस है। इसकी हिम्मत जितने टेम्परेचर यार उतना तो एटलीस्ट रहने दो यार। मौसम की हिम्मत बहुत ज्यादा बढ़ने वाली आने वाले टाइम में। आज का हाईएस्ट टेम्परेचर 42 डिग्री सेल्सियस है, एंड ह्यूमिडिटी जो है वो 32% है, एंड विंड जो है 9 किलोमीटर पर आर की रफ्तार से चल रही है। मिनिमम टेम्परेचर आज का 27 है डार्लिंग।

0: विंडोज के साथ जा।
1: संगे आ रे।
0: चलो फिर आ रही हूँ थोड़ी देर में, दिल डांस मारना स्टार्ट करेगा इस गाने को सुनने के बाद।

0: Radio Olive. 106.3 Radio Olive. Gio Bindas.
1: सोचो अगर सेविंग से आप बन जाओ मिलियनेयर, कमर्शियल बैंक के सेव एंड विन कैंपेन में भाग लीजिए।
2: हर 10,000 कतरी रियाल सेविंग ग्रोथ पे मिलेगा एक कूपन, या सिर्फ 50% सैलरी सेव करो एंड एंटर द ड्रॉ।
1: न्यू कस्टमर हो तो अकाउंट खोलो और फर्स्ट सैलरी ट्रांसफर पे गारंटीड चांस टू विन,
2: और 9 महीने की कंसिस्टेंट सैलरी ट्रांसफर के साथ मेगा ड्रॉ में एंट्री पक्की।
1: तो फिर सोचना क्या, अगले मिलियनेयर आप हो सकते हो। आज ही शुरू करो सेविंग्स, कमर्शियल बैंक, सेव एंड विन।
3: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.
4: Iske swag pe munde jaate hain dil haar ke. लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के। तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त, कतर की नंबर वन आरजे
5: सिमरन के साथ।
6: Zabardast evening, make you drive golden with.
7: Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
8: Supported by Homes Are Us. We complete your home.

इवन मेरे फ्रेंड ग्रुप में और आसपास के लोगों में मैं सुन रही हूँ, सब लोग ईद अल अदा की छुट्टियां प्लान कर रहे हैं, सब लोग ट्रैवल करने की फिराक में है। बढ़िया बात है यार, आपको छुट्टी मिल गई, बहुत सारे लोगों ने अप्लाई कर ली है एंड बहुत सारे लोग जाने वाले हैं। सो ईद अल अदा की बात करें तो अभी मैं पढ़ रही थी इसके बारे में, 27th को जो है वो प्रिडिक्ट किया जा रहा है। सो यार देखते हैं, एंड आप में से कितने लोग हैं जो कि ईद पे ट्रैवल करने वाले हैं और अभी मुझे सुन रहे हैं, तो प्लान्स बताओ यार, क्या करने वाले हो, घर पे जाने वाले हो या कहीं घूमने जाने वाले हो या फिर ईद यहीं पे मनाने वाले हो। देखो यहीं पे मनाओगे तो हम होंगे आप लोगों के साथ, आप हमारा रेडियो सुनिए, कुछ ना कुछ खास जो है वो डेफिनेटली आप लोगों के लिए हम करने वाले हैं। सो यार सिमरन कौर आपके साथ, जियो बिंदास।

0: You're listening to Radio Olive 106.3 FM.
1: Your daily surprise is here. अपना हाला रिचार्ज करो और पाओ फ्री डेटा या मिनट्स का सरप्राइज. क्लेम करो ओरिडू ऐप पर. ऑफर वैलिड है 31 मई तक. एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडू.

अस्सलाम है इश्कुम यारा, वालेकुम सलाम, सही बोल दिया मैंने। हां जी मैं कह रही सोनियो की दादी की हाल चाल सत श्री अकाल, सिमरन कौर आपके साथ 6:17 सेकंड।

में हम अपने आप को किसी से कम जो है वो नहीं समझेंगे। लाइफ में उतना कॉन्फिडेंस जो है ना दोस्त, वो तो बना के ही रखो। लेकिन एक चीज मैं आपको रियलाइज करवाना चाहती हूँ, जो कि आपको अनकंफर्टेबल कर देगी, जिसने मुझे भी अनकंफर्टेबल कर दिया था, कि हम जो है ना, हम, आप, मैं, हम सब ने अपना फेस कभी देखा नहीं है। मतलब जैसे हम, आप मेरा फेस देख रहे हैं, मैं आपका फेस देख रही हूँ, हमने अपना फेस कभी देखा ही नहीं है सिवाय फोटोज के और रिफ्लेक्शंस के। मैं कभी कभी जब हम अपना नाक देख पाते हैं, लेकिन जब मैं नाक पे कॉन्सेंट्रेट करने लग जाती हूँ मेरा सर घूम जाता है। बट या मैंने सोचा इस थॉट ने मुझे अनकंफर्टेबल किया है, मैं आपको कर दूं। वापस लौट रहे बस थोड़ी देर में, सुंदर ये रेडियो ऑलिव करके दे रही है जियो बिंदास।

0: You are listening to Radio Olive 106.3 FM.
1: Your daily surprise is here. अपना हाला रिचार्ज करो और पाओ फ्री डेटा या मिनट्स का सरप्राइज. क्लेम करो Ooredoo ऐप पर. ऑफर वैलिड है 31st मई तक. एक्सपीरियंस मोर विद Ooredoo.
2: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.
3: Iske swag pe munde jaate hain dil haar ke. लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के. तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त. गदर की नंबर वन आरजे
4: सिमरन के साथ.
5: Zabardast evening, make you drive golden with.
6: Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
7: Supported by Homes R Us. We complete your

0: कभी कभी तो वो भी सोचता है आज क्या है? आपके दिल में क्या है, ये ब्रेक के उस पार आपको पता लगेगा। ज्यादा बोलना मत यार, नजर लग जाती है। अभी फिलहाल के लिए गुजरात एंड हैदराबाद का मैच चल रहा है और गुजरात अभी खेल रही है 16.3 ओवर कंप्लीट होने के बाद। स्कोर है 126 एंड 4 विकेट जो है वो ऑलरेडी जा चुके हैं। 6:28:25 स्टूडियो की घड़ी पे हो चुके हैं। और क्या कर रहे हो यार इस टाइम पे आप? 3311063 पर आप मुझे बता सकते हैं। और वापस लौट के एक ऐसे कंपटीशन के बारे में मैं बताना चाहूंगी आपको जिसमें मेरा भी पार्टिसिपेट करने का मन करता है। मैं चाहती हूँ कि हमारा ऑफिस भी ऐसा जो है कॉम्पिटिशन ऑर्गेनाइज करे। ये कौन सा है, थोड़ा सा इंतजार करो, बताऊंगी।
1: Score update. Presented by Luke's Cafe. Sweetness that hits straight to the heart. Dadar ki most loved kulfi ab bilkul paas. Madar Kadeem Vakra VFS Global ke side. Oak Banafi Metro ke just next. Instagram pe follow karo and drop by today.
2: Powered by Ahmed Al Maghribi Perfumes. Buy 3 get 1 free. Aapne sahi suna. Ahmed Al Maghribi par chal raha hai. Buy 3 get 1 free offer on all products 15 Mei tak. This offer is available on all 19 branches.
1: Brought to you by Ibad Sports. Gear up, game on. All your sports needs at one place. Ibad Sports, brand of achievements. Contact 7733-9198.
3: Boundaries hit, flavors ignite. Ab har dish mein lagega desi swad ka tadka with Desi Dhaba. Taste ka real sixer. Desi Dhaba, Bin Mehmood, Tawar Mall and Mall of Qatar.

Olive Bay. Story of the day. Story of the day. Save one life, you're a hero. Save hundreds of life, you're a nurse. और इसीलिए हर साल 12 मई को दुनिया सेलिब्रेट करती है इंटरनेशनल नर्सेस डे, क्योंकि आज ही के दिन जन्म हुआ था फ्लोरेंस नाइटिंगेल का, द लेडी विद द लैम्प. वो लेडी जो हर रात में लैम्प लेकर वाउंडेड सोल्जर के पास जाती थी, तभी से नर्सिंग प्रोफेशन नहीं कंपैशन का दूसरा नाम बन गया. तो आज उन सब रियल लाइफ नाइटिंगेल्स को सल्यूट, जो हर रोज किसी अनजान इंसान के लिए अपनी नींद, अपना कंफर्ट सब भूल जाती हैं. हैप्पी इंटरनेशनल नर्सेस डे टू द हैंड्स दैट हील एंड द हार्ट्स दैट केयर.

0: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन हिंदी रेडियो स्टेशन रेडियो ऑलिव 106.3 FM।
1: गाय के साथ सीएनजी हो या फ्यूल टाइप बसेस 64 सीटर या कॉम्पैक्ट 26 सीटर पाइए बेहतर माइलेज और मैक्सिमम कंफर्ट। कारमेल ग्रुप के साथ अब सफर विदाउट सफर विजिट कारमेल ग्रुप नाउ।
2: कमर्शियल बैंक प्रेजेंट्स सीबी 2026 मिलियन रियाल्स ड्रीम।
3: अब सिर्फ सेविंग्स नहीं सपने ग्रो होंगे। जीतिए पूरे 5 मिलियन रियाल्स कैश प्राइजेस।
4: जीतने के चार रास्ते। पहला, अपना अकाउंट बैलेंस बढ़ाइए। हर 10,000 रियाल्स ग्रोथ पर पाइए एक कूपन।
3: दूसरा, अगर सैलरी 4,000 प्लस है या 50% सेव किया है तो आप एलिजिबल है।
4: तीसरा, नए कस्टमर्स को पहली सैलरी या 10,000 फंडिंग पर गारंटीड कूपन। और चौथा, 9 महीने रेगुलर सैलरी पर पाइए एक एक्स्ट्रा कूपन और मेगा ड्रॉ टिकट।
5: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के। लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के। भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त। कतर की नंबर वन आरजे सिमरन के साथ
6: जबरदस्त इवनिंग मेक यू ड्राइव गोल्डन विथ।
7: Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
8: Supported by Homes Are Us. We complete your

0: ਕਿੱਦਾਂ क्योंकि वहां पर ऐसा बोला जाता है कि एक ऐसी जगह है ये जहां पर बहुत सारा काम जो है वो लोगों को होता है. साउथ कोरिया में बहुत ज्यादा ओवरवर्क जो है नेशंस में से मानी जाती है, जहां पर उनको 3 से 5 घंटे की ही स्लीप मिलती है. सो साल में ये एक बार कंपटीशन होता है इस बार में सेकंड को, ओके, जहां पे आपको पावर नैप कॉन्टेस्ट जो है एक पार्क में होता है जहां पर आपको सोना होता है. ठीक है, रफली 200 पीपल जो है इसमें पार्टिसिपेट जो है वो करते हैं. बट अब इसमें जो है वो किस तरीके से जज किया जाता है, आपको जो है वो पीसफुली 1.5 घंटे के अराउंड जो है वो सोना होता है. इस तरह से नहीं जैसे मम्मी आ जाती है रूम में और आप फोन चला रहे होते हैं, आप सो जाते हो, मम्मी को लगता है आप सो रहे हो. नहीं नहीं नहीं, इसमें जो है जो सबसे लॉन्गेस्ट पीसफुली जो है वो सोया, उनको ना चेक किया जाता है. सेंसर्स होते हैं जिसमें उनकी हार्ट रेट्स वगैरह चेक करते हैं, जितनी स्टेबल और डीपली रेस्टेड स्लीपर्स होते हैं उनको पता लग जाता है. तो इस बार जो है वो 80 साल के बाबा जी जो है, मतलब 80 ईयर ओल्ड मैन जो है, उन्होंने प्राइज जीता और वो पीसफुली सोए. क्या बात है यार, ऐसे कॉम्पिटिशन हमारे भी ऑफिस में कराओ यार.
1: रेडियो और

0: लो चाय उल्फत हो गया। 7:50 स्टूडियो की घड़ी में रूट गोविंदा यार, मिर्ची लगती है तो पानी देते हैं, मैं क्या करूँ, थोड़ी होता है यार। और ये क्या हुआ यार,
1: रेडियो ऑलिव पर What the viral? क्या बात है? RJ सिमरन के साथ What the viral?
0: ये बात है। थोड़े दिन पहले एक वीडियो देख रही थी, वो वायरल हो रही थी। पंजाब की एक वेडिंग थी जिसमें दुल्हन के ऊपर जो है एक मैसिव कैश जो है वो शावर करते हैं, ऐसे पैसे लुटाते हैं, क्योंकि पंजाब की शादियों में भी ऐसा ट्रेंड होता है कि भाई बहुत ही पैसे लुटाए जाते हैं, पैसों के हार डाले जाते हैं, सबके अपने अपने है ये। मुझे टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं भी पंजाबी हूँ, है ना, मैं भी पंजाब से हूँ, लेकिन मुझे नहीं अच्छा लगता, पैसे ना खराब करो यार, ऐसे दे दो यार। चलो अभी बात यहाँ पे ये नहीं है, बात ये है कि ये वेडिंग क्यों वायरल हो रही थी। इसमें ऐसा बोला जा रहा था कि दुल्हन के ऊपर जो है 8.5 करोड़ रुपीज जो है वो शावर किए गए। तो ये बात मेरे गले के नीचे से नहीं उतरी, मैंने बोला 8.5 करोड़, ये बहुत ज्यादा एग्जैजरेशन जो है वो मेरे को लग रही है। तो जब मैंने ऑनलाइन सर्च करके, क्योंकि आप सोशल मीडिया पे जो भी देख रहे हो ना वो एकदम करेक्ट नहीं होता है, तो मेरे को लगा नहीं यार इसमें कुछ तो है, तो मैंने जाके अच्छे से सर्च किया इस न्यूज के बारे में। लेकिन उनकी फैमिली वालों ने बताया कि भाई, और उनके इवेंट मैनेजर और डीजे सब ने बताया कि भाई 2 लाख या 4 लाख थे, 8.5 करोड़ तो बिल्कुल भी नहीं थे। सो या इस मिस इन्फॉर्मेशन थी जो कि हर जगह पे सोशल मीडिया पे चल रही थी। लेकिन फिर भी क्या 2-4 लाख कोई चीज नहीं होती है क्या यार, ऐसे कैसे लुटा दिए यार, ऐसे दे दो शगुन यार, छोटे छोटे बच्चे उठा लेते हो। क्या आपने कभी ऐसे घर की शादियां रहती है पैसे उठाया कभी? 3311106 में बताओ यार।

0: हैं दिल हार के, लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के। तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त, गदर की नंबर वन आरजे
1: आरजे सिमरन के साथ।
2: Zabardast evening, make you drive golden with. Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry. Supported by Homes Are Us, we complete your home.

0: ये गाना मैं अपने हेटर्स को डेडिकेट करूंगी, तुझे मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं, लेकिन अगर प्यार है तो पानी दूंगी यार। 7:20 17 सेकंड स्टूडियो की घड़ी पे सोशल मीडिया का जमाना है, सारी चीज जो है वो लोग सोशल मीडिया पे डाल देते हैं, कोई नकली प्रोफाइल बना के डाल देते हैं और अपनी पहचान जो है वो नहीं बताते हैं, कभी कभी वो बहुत सारे हेट कमेंट्स जो है वो डालते हैं। सो रियलिटी चेक ये है कि जिस दिन आपने इन कमेंट्स की वजह से बॉदर करना छोड़ दिया, उस दिन आपकी लाइफ जो है बिल्कुल सही है। पहले मुझे बहुत फर्क पड़ता था इन सारी चीजों से, है ना, लेकिन अब मुझे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता। मुझे ऐसा लगता है कि जो इंसान इस तरह से कभी किसी के लिए कोई हेट कमेंट कर सकता है, किसी के लिए बुरा बोल सकता है, उसके अंदर कितना कुछ चल रहा होगा, वो बंदा कितना नेगेटिव होगा या वो बंदी कितनी ही नेगेटिव होगी, जब वो अपने आप से ही स्ट्रगल कर रहे हैं, वो अपने आप के लिए ही अच्छा नहीं कर पा रहे हैं लाइफ में, तो वो आपके लिए अच्छा कैसे सोच लेंगे। सो कभी भी उन लोगों को मैं बोलूंगी जो बहुत जल्दी इफेक्ट हो जाते हैं ऑनलाइन ट्रोलिंग से, किसी ने बैड कमेंट कर दिया, हाय एक कान से सुनो दूसरे कान से निकाल दो यार, जियो बिंदास।
1: अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है, जबरदस्त

0: सोचो अगर सेविंग से आप बन जाओ मिलियनेयर, कमर्शियल बैंक के सेव एंड विन कैंपेन में भाग लीजिए।
1: हर 10,000 कतरी रियाल सेविंग ग्रोथ पे मिलेगा एक कूपन, या सिर्फ 50% सैलरी सेव करो एंड एंटर द ड्रॉ।
0: न्यू कस्टमर हो तो अकाउंट खोलो और फर्स्ट सैलरी ट्रांसफर पे गारंटीड चांस टू विन,
1: और 9 महीने की कंसिस्टेंट सैलरी ट्रांसफर के साथ मेगा ड्रॉ में एंट्री पक्की।
0: तो फिर सोचना क्या, अगले मिलियनेयर आप हो सकते हो। आज ही शुरू करो सेविंग्स, कमर्शियल बैंक, सेव एंड विन।
2: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के, लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के। तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त, गदर की नंबर वन आरजे
3: सिमरन के साथ।
4: Zabardast evening, make you drive golden with.
5: Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
6: Supported by Homes Are Us. We complete your home.

0: बताओ इश्क को इतना बुरा भला बोल दिया यार, इश्क अच्छी चीज है, अब इंसान लोग खराब करते हैं यार इश्क को।
1: But I love इश्क बबुआ।
0: Me too, बबुआ। जी मैं जी सोने की तरह की हालचाल सत श्री अकाल, सिमरन कौर है आपके साथ। एंड आज सुबह से एक न्यूज देख रही हूँ, मौनी रॉय, जी हाँ मौनी रॉय, जिन्होंने दुबई में शादी की थी, उनके हस्बैंड का नाम सूरज नामियार, और आज सोशल मीडिया पे हर जगह पे है कि दोनों ने एक दूसरे को अनफॉलो कर दिया। और मैं भी गई उनकी प्रोफाइल पे, क्योंकि अपन में भी चुल है ना थोड़ी सी, जाके चेक किया तो नहीं थे। और उसके बाद मैं नामियार की प्रोफाइल पे गई, भाई वो प्रोफाइल अब एग्जिस्ट ही नहीं करती है। तो मुझे लग रहा है कि ना लाइफ किसी से नहीं हो रही है यार, मतलब नहीं हो रही है, कोई किसी को नहीं सह रहा है, सबको अकेले रहना है यार अपनी लाइफ में। लेकिन जिनकी शादियां हो गई और जो खुश है यार, उनके लिए बड़ा अच्छा लगता है।
2: अस्सलाम वालेकुम सिमरन, दिस इज अफशान एंड टुडे इज माय पेरेंट्स एनिवर्सरी, मिस्टर मोइज अहमद एंड मिसेस हाजिया इफत, कैन यू पुट सम रोमांटिक सॉन्ग्स फॉर देम, जियो बिंदास।
0: जियो बिंदास, बधाइयां बिछाइयां थे बहुत सारे पटाखे आपके पेरेंट्स को। स्वीट, इनके बेटे ने गाना रिक्वेस्ट किया, लो जी रोमांटिक गाना आपके मम्मी पापा के लिए।

0: भाई साहब सो मच चाहत इज गोइंग ऑन। 7:51 स्टूडियो की घड़ी पे हो चुके हैं। गुजरात और हैदराबाद का मैच चल रहा है। क्विकली मैं आपको अपडेट दे देती हूँ। गुजरात ने पहले खेलते हुए 169 रन का टारगेट दिया है। हैदराबाद अभी खेल रही है। 9 ओवर कंप्लीट होने के बाद स्कोर हो गया 54 और 4 विकेट भी जा चुके हैं। 55 हो गया 9.1 पे। अभी 65 बॉल्स पे 114 रन जो है वो जीतने के लिए चाहिए। तो किसको सपोर्ट कर रहे हो आप 3311063 पे बता देना। अब मिलती हूँ ये वाले घंटे के उस पार यानी कि अगले घंटे में।
1: T20 स्कोर अपडेट
2: presented by Brooks Cafe. Sweetness that hits straight to the heart. Dadda ki most loved kulfi ab bilkul paas. Madar Kareem Vakra VFS Global ke side Oak Banafi Metro ke just next. Instagram pe follow karo and drop by today.
3: Powered by Ahmed Al Maghribi Perfumes. Buy 3 get 1 free. Aapne sahi suna. Ahmed Al Maghribi par chal raha hai Buy 3 get 1 free offer on all products 15 May tak. This offer is available on all 19 branches.
2: Brought to you by Ibad Sports. Gear up, game on. All your sports needs at one place. Ibad Sports, brand of achievements. Contact 7733-9198.
4: Boundaries hit, flavors ignite. Ab har dish mein lagega desi swad ka tadka with Desi Dhaba. Taste ka real success. Desi Dhaba, Bin Mehmood, Tawar Mall and more.

0: Radio Olive. 106.3 Radio Olive. Geo Bindas.
1: Your daily surprise is here. अपना हाला रिचार्ज करो और पाओ फ्री डेटा या मिनट्स का सरप्राइज. क्लेम करो ओरिडू ऐप पर. ऑफर वैलिड है 31st मई तक. एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडू.
2: Hi everyone, मैं हूँ अरमान मलिक.
3: अरमान मलिक.
4: मैं नंबर वन.
0: 106.3 FM Radio Olive. Geo Bindas.
5: Olive Suno Radio Network. Qatar's number one Asian Radio Network.
6: Radio Olive. I'm number one.
7: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के. लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के. तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त. कतर की नंबर वन आरजे
8: सिमरन के साथ.
9: Zabardast evening. Make you drive golden with.
10: Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
11: Supported by Homes Are Us. We complete your home.
6: I'm the number one Radio Olive.
5: Olive Suno Radio Network. Qatar's number one Asian Radio Network.
12: ये गाना सुनते सुनते ना अपना नाम टाइप कर लो, क्योंकि इसके बाद मैं नेम गेम खेलने वाली हूँ और आप सबके नाम लेने वाली हूँ.

0: dito, ho. Beautiful track, Ludo Film se aap hi gaana sun rahe hain. Chalo dost, name game khelne ka time aa gaya hai. चलो अब जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, थैंक यू सो मच पहले तो उसके लिए. अब मैं मेरा थैंक यू सो मच कहने का ये तरीका है कि मैं आप सबके नाम लेती हूँ, तो आपको मुझे अपना नाम बताना पड़ेगा और मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भेजना पड़ेगा. मेरा व्हाट्सएप का नंबर है 3311063. आराम से बोल देती हूँ, 3311063. इस नंबर पे सिर्फ और सिर्फ आप अपना नाम लिख के भेजो. अगला गाना शुरू होने से पहले जितने भी नाम मुझे देखेंगे वो सारे नाम मैं बोलने वाली हूँ. जावेद खोकर जी, गुजर जी, हाफिज जी, आलम जी, रमन जी, अराफत जी, अहमद जी, डेजी जी, रिफत जी, बंगाश जी, आई होप मैं आपका नाम सही ले रही हूँ, हाफिज जी, सलमान जी, गुरांश जी, थैंक यू सो मच, गुरंश, थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए, मोइस जी, थैंक यू सो मच, मोहम्मद जी, थैंक यू सो मच, मानिक जी, थैंक यू सो मच, तंजी जी, थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए, नूर बंगेश जी, थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए, मसूरज जी, थैंक यू सो मच, इमरान गुजर जी, थैंक यू सो मच, हाफिज जी, थैंक यू सो मच. बार बार अगर आपने नाम सुन लिया है तो बार बार नाम मत लिखिए, किसी और का नंबर आने दीजिए. जैम जी, थैंक यू सो मच, मंजू जी, थैंक यू सो मच, हाजरा जी, थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए, उमर जी, थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए, साहिल खान जी, बहुत बहुत शुक्रिया, नबील जी, थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए, फिरोज जी, थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए, अहमद जी, थैंक यू सो मच, सामी जी, थैंक यू सो मच, इदरीस जी, थैंक यू सो मच, सोना जी, थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए, अली जी, थैंक यू सो मच, सैफुल्ला जी, थैंक यू सो मच, शशिकांत जी, इब्रार जी, रियांश जी, थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए, शाबाज गुल जी, नबील जी, एंड दैट्स इट फॉर नाउ. जिन जिन लोगों के नाम ले लिए अब आप थैंक यू लिख सकते हो और साथ में अपना फेवरेट वाला इमोजी जो है वो भेजो जो कि आपको पसंद है. मोइस जी, थैंक यू सो मच.
1: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर.
2: क्या बात है सर, क्या पर ये बात है.

0: फुल ट्रैक दे दे प्यार दे। गुजरात ने पहले खेलते हुए 169 रन का टारगेट दिया एंड हैदराबाद अभी खेल रही है। और एक मिनट रुक जाइए। ओके, सो आज का जो मैच है वो गुजरात 82 रन से जीत गई है। बताइयां तो बहुत सारे पड़ा गए। एक नंबर आज तो गुज्जू। 8:27:25 स्टूडियो की घड़ी पे हो चुके हैं चक्को फटे।
1: T20 स्कोर अपडेट presented by Luke's Cafe. Sweetness that hits straight to the heart. Dadde ki most loved kulfi ab bilkul pass. Madar Kadim Vakra VFS Global K side Oak Banafi Metro Kick just next. Instagram pe follow karo and drop by today.
2: Powered by Ahmed Al Maghribi Perfumes. Buy 3 get 1 free. Aapne sahi suna. Ahmed Al Maghribi par chal raha hai buy 3 get 1 free offer on all products 15 May tak. This offer is available on all 19 branches.
1: Brought to you by Ibad Sports. Gear up, game on. All your sports needs at one place. Ibad Sports, brand of achievements. Contact 7733-9198.
3: Boundaries hit, flavors ignite. Ab har dish mein lagega desi swad ka tadka with Desi Dhaba. Taste ka real siksa. Desi Dhaba, Bin Mehmood, Tawar Mall and Mall of Qatar.

Save one life, you're a hero. Save hundreds of life, you're a nurse. और इसीलिए हर साल 12 मई को दुनिया सेलिब्रेट करती है इंटरनेशनल नर्सेस डे, क्योंकि आज ही के दिन जन्म हुआ था फ्लोरेंस नाइटिंगेल का, द लेडी विद द लैम्प. वो लेडी जो हर रात में लैम्प लेकर वाउंडेड सोल्जर के पास जाती थी, तभी से नर्सिंग प्रोफेशन नहीं कंपैशन का दूसरा नाम बन गया. तो आज उन सब रियल लाइफ नाइटिंगेल्स को सल्यूट, जो हर रोज किसी अनजान इंसान के लिए अपनी नींद, अपना कंफर्ट सब भूल जाती हैं. हैप्पी इंटरनेशनल नर्सेस डे टू द हैंड्स दैट हील एंड द हार्ट्स दैट

0: सुन रहे हैं कतर का नंबर वन हिंदी रेडियो स्टेशन रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम जियो बिंदास।
1: ऑलिव सुनो रेडियो नेटवर्क कतर्स नंबर वन एशियन रेडियो नेटवर्क।

अच्छा कभी रात में छुप छुप के किससे बातें करी है? मतलब धीरे धीरे क्या कर रहे हो? ये आवाज मुझे पता नहीं क्यों बड़ी इरिटेटिंग लगती थी, लेकिन जब तक इस एज में आया और समझना स्टार्ट किया कि इस आवाज का होना भी बहुत जरूरी है, तो समझ आया कि ये आवाज तो सबसे प्यारी है। 106.3 रेडियो ऑलिव से आपके दिल की आवाज सुना, मैं हूँ आरजे आकाश मिड नाइट लाउंज में। तो वेलकम दोस्तों, मैं हूँ आपके दिल की आवाज। तो दिल की आवाज आज रात वो धमाल मचाएगी आपके साथ, वो बातें करेगी जो आपके अंदर अभी भी दबी हुई है। हम लेकर आए कुछ खास शायरियां, दिल की स्टोरीज और वो छोटी छोटी बातें जो रात को और भी खास बना देती है ना। तो वायरल रील्स के पीछे की रियल कहानियां उसके बारे में बात करेंगे। दिल को छू जाने वाली कुछ शायरियां हैं जो आप लिख कर देंगे एक लाइन में, उसको पूरा मैं करूंगा। और एक छोटा सा एक सेगमेंट लेकर आया हूं मैं आपके लिए, जिसमें आपका भी कुछ टैलेंट दिखाई जाएगा, यानी कि शायरीज का तो टैलेंट है ही, साथ ही साथ ट्रिविया टैलेंट दिखाया जाएगा कि बॉलीवुड की कितनी नॉलेज रखते हैं। तो रात के पहले पल से ही तैयार हो जाइए एक जर्नी के लिए, जहां इमोशंस, मोटिवेशंस और थोड़ी सी मस्ती सब साथ साथ है। अभी तो फिलहाल हम सब बिंदास है, जियो बिंदास।

पहला प्यार, पहली बात, वो पहले अल्फाज और वो पहली मुलाकात, पहली चीज कभी कोई नहीं भूल पाता है ना। इंस्टाग्राम भी नहीं भूल पाएगा। 106.3 रेडियो ऑलिव से आपके दिल की आवाज, मैं हूँ आरजे आकाश मिडनाइट लाउंज में। वो पहली रील इंस्टाग्राम कभी नहीं भूल पाएगा जो कि पहली बार इंस्टाग्राम पे आई थी, फर्स्ट एवर रील ऑन इंस्टाग्राम। जी हाँ, रील्स की रियलिटी। जी मैं आपको बताने जा रहा हूँ रील्स वाली रियल कहानी। तो इंस्टाग्राम की जो पहली रील थी, फर्स्ट एवर रील थी, वो पहली ऑफिशियल बनी थी जर्मनी में अगस्त 2020 में। एक ट्रैवल इन्फ्लुएंसर ने पोस्ट किया था बीच क्लिप, 15 सेकंड की क्लिप थी सिर्फ, लेकिन उसके बाद 30 और 60 सेकंड तक की रील्स भी अब आप बना सकते हैं। रील्स इतनी ज्यादा इंटरेस्टिंग होती जा रही है, लोगों के टैलेंट्स बाहर आ रहे हैं कि अब टीवी छूटता जा रहा है और इंस्टाग्राम पकड़ता जा रहा है। अब इंसान टीवी को कम देखता है, सबको बड़े टीवी लेने की एक्साइटमेंट भी खत्म होती जा रही है। मुझे लग रहा है कि बिजनेस अब थोड़ा सा डिजिटल चीजों में ज्यादा जा रहा है। तो आप भी देखिए कि आप अपने टैलेंट को कहां पर इन्वेस्ट कर रहे हैं। क्या फिर आपके ब्लॉग्स देखने में टाइम निकलता है, बनाने में निकलता है? बताइएगा मुझे इंस्टाग्राम पे कमेंट करके। रेडियो ऑलिव का पेज है, फॉलो करके बताइएगा कि आप रील्स बनाते हैं या देखने वालों में से हैं। छुप छुप के अकाउंट भी बना रखा है ना, उससे रील्स देखते हो ना। आ रहा हूं वापस, छुप छुप के गाने भी सुनने पड़ेंगे, एंजॉय करना है मेरे साथ खुल के, ताकि दिल भी कहेगा जी बिंदास।

अच्छा, दिन भर आप Netflix, Amazon Prime और न जाने कौन कौन से पोर्टल्स पर, कौन कौन सी साइट्स पे जाकर मूवीज देखते हैं और एंजॉय करते हैं। ये आपका दिन बना देती है, वीकेंड से लेकर वीकडेज की रात शाम सब प्यारी चार चांद लगा देती है। लेकिन आपको पता है कि इनसे रिलेटेड एक बहुत खास सवाल लेकर आ गया हूँ मैं आज। जी हाँ, 106.3 रेडियो ओलिव से आपके दिल की आवाज, मैं हूँ आरजे आकाश मिडनाइट लाउंज में, और फिल्मी फ्लैशबैक की बारी है, यानी कि एक बॉलीवुड या हॉलीवुड ट्रिविया, उस सिनेमा का जुड़ा एक ऐसा सवाल, एक ऐसा ट्रिविया जो आपको पक्का पता होगा। मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था ना, हर पहली चीज यादगार रहती है। तो सबसे पहले तो इंस्टाग्राम खोल लीजिए, इनबॉक्स में जाइए, रेडियो ऑलिव का पेज है, फॉलो करके इनबॉक्स में जाइए और आंसर देने को सबसे पहले रेडी हो जाइए, क्योंकि जो सबसे पहले सही जवाब देगा उसके नाम के साथ एक बढ़िया सा गाना डेडिकेट मैं करूंगा। तो सवाल है मेरा, दुनिया की सबसे पहली कलर मूवी कौन सी आई थी? सबसे पहली मूवी मतलब कलर्ड जो मूवी आई थी वो कौन सी आई थी और कब आई थी? हिंट चलो मैं देता हूँ, 1908 में एक छोटी सी ब्रिटिश शॉर्ट फिल्म थी ये, इसका नाम आप मुझे बताओ और जल्दी से मुझे इस मूवी के बारे में थोड़ा बहुत बताओ। आपके पास कुछ ही टाइम है, क्योंकि आते ही जल्दी से मैं विनर का नाम बताऊंगा। आई मैसेज आने स्टार्ट हो गया है, लेट्स सी आपका मैसेज कितनी देर में आता है, सही आंसर आना मैटर करता है। तो तब तक एक गाना हो जाए ताकि बैकग्राउंड में गाना चलेगा, चल पे मूड रहेगा। जियो बिंदास, तो

यार जवाब मैं कहता हूँ ना कितनी जल्दी आए ये तो एक बार को मैटर करता है, लेकिन जवाब सही आए ये बहुत मैटर करता है ना। मैंने जो पूछा उसकी नॉलेज आपको भी है, ये चीज जताती है कि आपके यहाँ नॉलेज कितनी फास्ट है। कुल मेरे पास 34 सेकंड्स में सही आंसर वैभव का आया, और बिल्कुल सही आंसर आया है जिन्होंने मेरे को बताया है कि दुनिया की सबसे पहली कलर मूवी कौन सी आई थी। जी हाँ, 106.3 रेडियो ऑलिव से आपके दिल की आवाज, मैं हूँ आरजे आकाश। मिडनाइट लाउंज में 1908 में एक छोटी सी ब्रिटिश शॉर्ट फिल्म थी, अ विजिट ऑफ द सी साइट। जी हाँ दोस्तों, सिर्फ 8 मिनट्स की ये फिल्म थी और इसे बनाया गया था काइमा कलर प्रोसेस से। उस जमाने का पहला सक्सेसफुल नेचुरल कलर सिस्टम था ये। सीन सिंपल था, लोग समुंदर के किनारे खड़े थे, खेल रहे थे, बोट्स मूव कर रहे थे, लेकिन पहली बार जिंदगी के रंग इन चलती तस्वीरों में सबके सामने आए। और अगर हम फुल लेंथ कलर फिल्म की बात करें तो वो थी द वर्ल्ड, द फ्लैश एंड द विल एंड द डेविल। क्या बात है, 1914 में मूवी थी। सोचो यार, हर चीज कितनी ज्यादा कलर जब पहली बार दिखी होगी टीवी स्क्रीन पे, जो कल तक सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट देख रहे थे, कितना कुछ लगता है ना इस चीज में। जैसे छोटा सा बेबी होता है, उसको स्टार्टिंग में सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट दिखता है, उसके बाद धीरे धीरे उसके कलर्स उसको दिखने स्टार्ट होते हैं, कौन सा कलर पहली बार दिखता है, तो कितना कुछ नया लगता होगा ना उस समय। इस एक्सपीरियंस को आप भी कर चुके, बस आपको याद नहीं है। लेकिन इस एक्सपीरियंस को आप नहीं भूलेंगे जो मैं देने वाला हूं, यानी कि एक बढ़िया से गाने के साथ। तो हाई कर लीजिए वॉल्यूम, ताकि जो वाइब्स हैं वो ऑटोमेटिकली हाई हो जाएंगी, ताकि दिल भी सुन के कहेगा जियो बिंदास।

अच्छा, कुछ बातें हम खुद से भी छुपा लेते हैं, वो फीलिंग्स जो समझ नहीं आती, या वो सपने जो शायद अभी रियलिटी नहीं बन पाए, बस हमारी खामोशी में छुपा जाते हैं, नहीं? 106.3 रेडियो ऑलिव से आपके दिल की आवाज सुनाओ, मैं हूं आरजे आकाश। मिडनाइट लाउंज में कुछ अनसेड टॉक्स। कभी हम किसी के सामने स्माइल करते हैं पर दिल के अंदर स्ट्रगल चल रहा होता है, नहीं? धक धक हो रही होती है, कभी अपने आप से भी कहना मुश्किल हो जाता है, मैं थक गया हूं, है ना? ये वाली बात भी कहते हुए डर लगता है, मन में डर गया हूं, बस मैं डर गया हूं, मैं और बेहतर कर सकता हूं, ये वाली बात भी कहने का मन करता है पर कह नहीं पाते। लेकिन ये अनसेड फीलिंग्स ही हमें स्ट्रॉन्ग बनाती है, पता है? ये हमें सिखाती है कि पेशेंस और सेल्फ अंडरस्टैंडिंग का मैजिक कैसे काम करता है, और जो हम खुद से छुपाते हैं ना, वो कभी कभी हमारी असली जर्नी का सबसे बड़ा टीचर बन जाता है। तो याद रखो दोस्तों, अपने इमोशंस को इग्नोर मत करो, पर उन्हें फील करना और एक्सेप्ट करना सीखो। कभी अपने आप से सच्चाई छुपाना जरूरी हो सकता है, लेकिन अपनी ग्रोथ का असली रास्ता सेल्फ अवेयरनेस से गुजरता है, नहीं? तो रात के सुकून में अपनी खामोशी से बातें करो और बाकी सुनते रहो रेडियो ऑल जियो बिंदास।

0: हेलो, ये है मिडनाइट लाउंज।
1: दिस आवर इज ब्रॉट टू यू बाय
2: होम्स आर अस, वी कंप्लीट योर होम।
1: रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी।

एक लड़का दिल्ली के एक छोटे से नेबरहुड से आया। सपने उसके बड़े थे पर रिसोर्सेस कम। नाम था शाहरुख खान। 106.3 रेडियो ऑलिव से आपके दिल की आवाज। मैं हूं आरजे आकाश, मिडनाइट लाउंज में, और बारी है एक रात एक कहानी। शाहरुख खान की कहानी है। शाहरुख खान का सफर किसी फिल्म का सीन नहीं था, बल्कि एक रियल लाइफ ब्लॉकबस्टर था। दिल्ली यूनिवर्सिटी का स्टेज से उन्होंने एक्टिंग की शुरुआत की थी, थिएटर्स प्ले में परफॉर्म किया और फिर मुंबई के स्ट्रगल्स भरे सफर पर निकले। पहले उन्होंने टीवी शोज और छोटे रोल्स किए, काफी उन्होंने छोटे रोल्स भी किए, फौजी, सर्कस जैसे प्रोजेक्ट्स। लोगों ने अंडर एस्टिमेट किया, पर एसआरके ने गिव अप नहीं किया और 1992 में आए फिल्म दीवाना से उनका करियर एक्सप्लोड हो गया। आज दुनिया उन्हें किंग खान के नाम से जानती है। 100+ फिल्म्स, बिलियंस ऑफ फैंस और एक इंस्पायरिंग जर्नी जो हर ड्रीमर को मोटिवेट करती है। नहीं तो याद रखना दोस्तों, शुरुआत छोटी हो सकती है पर अगर दिल बड़ा हो और डेडिकेशंस 100% हो तो कोई भी गोल इम्पॉसिबल नहीं है। नहीं, यही थी एक रात एक कहानी, शाहरुख खान के सपनों से रियलिटी तक का सफर। सुनते रहिए रेडियो ऑल इंडिया जियो बिंदास, मिडनाइट लाउंज ऐसे ही चलते रहेगा और आपका ये प्यारा सा सफर ऐसे ही कटता रहेगा। जियो बिंदास।

तो धुरंधर आपके मॉर्निंग को बनाएंगे बिंदास मॉर्निंग। सुनिए आरजे कशिश और सुदेव को हर सुबह 6 से 10 बिंदास मॉर्निंग में ओनली ऑन रेडियो ओनली 106.3 FM जियो बिंदास।

अच्छा प्यार ना इंसान को शायर बना देता है, ये बात याद रखना मेरी। 106.3 रेडियो ऑलिव से आपके दिल की आवाज, मैं हूँ आरजे आकाश, मिडनाइट लाउंज में। फिलहाल तो मिडनाइट शायरी लाउंज में, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों के शायर्स अंदाज मेरे सामने आ रहे हैं। हर एक शो में मैं आपसे अगले शो के लिए एक लाइन मांगता हूँ, जिसको पूरा मैं करता हूँ नेक्स्ट शो में। तो यानी लास्ट शो में एक लिस्नर ने, जिनका नाम नितिन है, उन्होंने मुझे बड़ी प्यारी लाइन दी थी, एक लाइन लिख के दी, उसको पूरा मैं करने वाला हूँ। छुप छुप के बस तुम्हें याद करता हूँ, तो मैंने लिखा है, छुप छुप के बस तुम्हें याद करता हूँ, हर एक पल में तेरे साथ पाता हूँ, सितारे भी मेरे जज्बात समझ गए, और चांद के साथ ये राज छुपाता हूँ कि मैं शायद तुम्हें प्यार करता हूँ। हाय, तो दोस्तों आज रात भी अपनी एक लाइन भेजिए मुझे, इंस्टाग्राम पे जाइए, रेडियो ऑलिव का पेज मिल जाएगा, फॉलो करके इनबॉक्स में हाय आरजे आकाश, और शेयर कीजिए मेरे साथ वो एक लाइन जो आपके दिल से निकली है, क्योंकि रात को वो सारे जज्बात दिल से निकलते हैं जो दिल में भरे होते हैं ना, और मैं उसे शायरी में बदल कर पूरा कर दूंगा, उस सफर को और गहरा कर दूंगा। फिलहाल दिल से महसूस करते रहिए, अल्फाजों में लिखते रहिए, और इसी तरह से हर धुन में खोते रहिए, साथ में कहते रहिए जियो बिंदास।

0: Kolkata's number one radio station. Radio Olive 106.3 FM.
1: अच्छा कुछ लोग होते हैं बहुत रिजर्व्ड होते हैं, उनका सर्कल बड़ा छोटा होता है और वो इसलिए भीड़ नहीं बढ़ाना चाहते, वो कहते हैं कि फेक से अच्छा क्वालिटी है, क्वालिटी मैटर करती है, क्वांटिटी मैटर नहीं करती, और यही सच है। 106.3 रेडियो ऑलिव से आपके दिल की आवाज, मैं हूँ आरजे आकाश। मिडनाइट लाउंज में लाइफ जैसे एक बस की तरह है, ट्रेन की तरह है, ठीक उसी तरह ही शो भी ट्रेन की तरह है। आप उसमें आते हैं लेकिन कुछ उसमें से ऐसे हैं जो चले जाते हैं और कुछ हैं जो मेरे साथ बने रहते हैं, है ना। तो ये जो बने हुए हैं ना अभी तक मेरे साथ, ये वो हैं जो इस दोस्ती को बहुत खास बनाते हैं। तो चलिए मैं भी जाता जाता इस दोस्ती को एक तोहफा दे के जा रहा हूँ, बढ़िया से गाने लगा के जा रहा हूँ अपनी लाइब्रेरी से, क्योंकि अब वक्त तो भले स्टूडियो क्लॉक के हिसाब से मेरा जाने का हो गया लेकिन जाते जाते इतने सुंदर गाने लगा के जा रहा हूँ जो आपकी ये सफर है ना, चाहे जिंदगी का या गाड़ी का, इसी तरह बेशुमार प्यारा सा बना देंगे। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कभी अकेला फील मत कीजिएगा। कभी भी दिल में कोई बात है जो शेयर करनी है और कोई दोस्त नहीं है जो ऐसा खास है, तो बस इंस्टा पे जाइए, रेडियो ऑलिव का पेज मिल जाएगा, फॉलो करके इनबॉक्स में हाय आरजे आकाश और मेरे साथ भेज झिझक शेयर कीजिए। ट्रस्ट मी, मेरी तरफ से बिल्कुल ओपन, कुछ भी शेयर कर सकते हो, अपने दिल की कोई भी बात है शेयर करो, बेधड़क मुझसे बात करो, क्योंकि ये दिल हल्का होगा तभी तो बोलेगा जियो पिंदास। गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर, जियो पिंदास।

तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त कतर की नंबर वन आरजे आरजे सिमरन के साथ जबरदस्त इवनिंग रोज शाम 5 से 9 ओनली ऑन 106.3 रेडियो ऑलिव जियो।

0: ऑलिव रिचार्ज हर दोपहर 2 से 6 रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास
1: इन एसोसिएशन विद
2: होम्स आर अस वी कंप्लीट योर होम
0: रेडियो ऑलिव योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी.

0: Legend Radio Station, Radio Olive 106.3 FM.
1: अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है।

0: You're listening to Radio Olive 106.3 FM.
1: अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है।

You are listening to Radio Olive 106.3 FM.

0: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन हिंदी रेडियो स्टेशन रेडियो ऑलिव 106.3 FM।
1: अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है।

Olive. 106.3 Radio Olive. Gio Bendaz.